کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: उसमें अबदुल आबाद रहेंगे, न किसी को दोस्त पाएंगे और न मददगार।
1: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا।
0: जिस दिन उनके मुंह आग में उलटाए जाएं, कहेंगे ऐ काश हम खुदा की फरमाबरदारी करते और रसूल खुदा का हुक्म मानते।

पूछो कि तुमको आसमानों और जमीन से कौन रिस्क देता है, कहो कि खुदा, और हम या तुम या तो सीधे रास्ते पर हैं या सरीह गुमराही में।

कहेंगे तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है, न ये, बल्कि ये जिन्नात को पूजा करते थे और अक्सर उन्हीं को मानते थे।

0: और कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा, और कोई बोझ में दबा हुआ अपना बोझ बटाने को किसी को बुलाए तो कोई उसमें से कुछ न उठाएगा, अगरचे कराबतदार ही हो। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उन्हीं लोगों को नसीहत कर सकते हो जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते और नमाज बिल इल्तिजाम पढ़ते हैं, और जो शख्स पाक होता है अपने ही लिए पाक होता है, और सबको खुदा ही की तरफ लौट कर जाना है।
1: वमा यस्तविल अअमा वल बसीर,
0: और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं।
1: वला ज़ुलुमात वलन नूर,
0: और ना अंधेरा और रोशनी।
1: वला ज़िल वलल हरूर,
0: और ना साया और धूप।
1: वमा

0: क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने आसमान से मेवे बरसाया तो हमने उससे तरह तरह के रंगों के मेवे पैदा किए, और पहाड़ों में सफेद और सुर्ख रंगों के कतआत हैं और बाज काले स्याह हैं।
1: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आज़मीन हिजरत का इल्म हो जाने की सूरत में इनके साथ मुशरिकीन जो सलूक करते थे उसके ये तीन नमूने हैं, लेकिन इन सब के बावजूद लोग आगे पीछे पै दर पै निकलते ही रहे। चुनाचे बैत अकबा कुबरा के सिर्फ दो माह चंद दिन बाद मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के अलावा कुछ ऐसे मुसलमान जरूर रह गए थे जिन्हें मुशरिकीन ने जबरदस्ती रोक रखा था। इन दोनों हजरात हजरत अबू बकर और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना साजो सामान तैयार करके रवानगी के लिए हुक्म खुदावंदी का इंतजार कर रहे थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का रखते सफर भी बंधा हुआ था। सही बुखारी में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, मुझे तुम्हारा मकाम हिजरत दिखलाया गया है। ये लावे की दो पहाड़ियों के दरमियान वाके एक निखलिस्तानी इलाका है। इसके बाद लोगों ने मदीने की जानिब हिजरत की। आम मुहाजरीन हबशा भी मदीना ही आ गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी सफर मदीना के लिए साजो सामान तैयार कर लिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जरा रुके रहो क्योंकि तवक्को है मुझे भी इजाजत दे दी जाएगी। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मेरे बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी उम्मीद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उसके बाद अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु रुके रहे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर करें। उनके पास दो ऊँटनियाँ थी, उन्हें भी चार माह तक बबूल के पत्तों का खूब चारा खिलाया। जब मुशरिकीन ने देखा कि सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन तैयार होकर निकल गए और बाल बच्चों और मालो दौलत को लात फांद कर ओसो खजरज के इलाके में जा पहुँचे तो उनमें बड़ा कोहराम मचा, गमो अलम के लावे फूट पड़े और इन्हें ऐसा रंजो कलक हुआ कि इससे कभी साबका न पड़ा था। अब उनके सामने एक ऐसा अजीम और हकीकी खतरा मुजस्सम हो चुका था जो उनकी बुत परस्ताना और इक्तसादी इज्तमाइयत के लिए चैलेंज था। मुशरिकीन को मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कमाल कयादत और रहनुमाई के साथ साथ किस कदर इंतहाई दर्जा कुव्वत तासीर मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में कैसी अजीमत और इस्तकामत और कैसा जज्बा और फिदाकारी पाया जाता है। फिर ओसो खजरज के कबाइल में किस कदर कुव्वत और कुदरत और जंगी सलाहियत है और उन दोनों कबाइल के इखला में सुलह और सफाई के कैसे जज्बात हैं और वो कई बरस तक खाना जंगी की तलखियां चखने के बाद अब बाहमी रंजो अदावत को खत्म करने पर किस कदर आमादा हैं। उन्हें इसका भी एहसास था कि यमन से शाम तक बहर अहमर के साहिल से इनकी जो तजारती शहरा गुजरती है, उन्हें इसका भी एहसास था कि यमन से शाम तक बहरा हमर के साहिल से उनकी जो तजारती शहरा गुजरती है उस शहरा के एतबार से मदीना फौजी अहमियत के किस कदर हसास और नाजुक मकाम पर वाके है। दरा हलीका मुल्क शाम से सिर्फ मक्का वालों की सालाना तजारत 2.5 लाख दिनार सोने की तनासुब से हुआ करती थी। अहले ताइफ वगैरह की तजारत इसके अलावा थी और मालूम है इस तजारत का सारा दारोमदार इस पर था कि ये रास्ता पुरअमन रहे। इन तफसीलात से बखूबी अंदाजा हो सकता है कि यसरब में इस्लामी दावत के जड़ पकड़ने और अहले मक्का के खिलाफ अहले यसरब की सफ आरा होने की सूरत में मक्के वालों के लिए कितने खतरात थे। चूंकि मुशरिकीन को इस गंभीर खतरे का पूरा पूरा एहसास था जो उनके वजूद के लिए चैलेंज बन रहा था, इसलिए उन्होंने इस खतरे का कामयाब तरीन इलाज सोचना शुरू किया। और मालूम है कि इस खतरे की असल बुनियाद दावत इस्लाम के लंबरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। मुशरिकीन ने इस मकसद के लिए बैत अकबा कुबरा के तकरीबन 2.5 महीने बाद 26 सफर 14 सन नबुआ को दिन के पहले पहर मक्के की पार्लियामेंट दारुल निदा में तारीख का सबसे खतरनाक एहतजाज मुनक्किद किया और इसमें कुरैश के तमाम कबाइल के नुमाइंदों ने शिरकत की। मौजूए बहस एक ऐसे कतई प्लान की तैयारी थी जिसके मुताबिक इस्लामी दावत के इलमबरदार का किस्सा बाअजलत तमाम पाक कर दिया जाए और इस दावत की रोशनी की कली तूर पर मिटा दी जाए। इस खतरनाक इज्तमा में कबाइल कुरैश के नुमाया चेहरे ये थे, अबू जहल बिन हश्याम, جبرین متم، شبیہ بن ربیہ، نظر بن حارس، ابو البختری بن حشام، نبی بن حجاج، امیہ بن خلف۔ وقت مقررہ پر یہ نمائندگان دار الندو پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ الجلیل کی صورت وبا اوڑے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا، یہ کون سا شیخ ہے؟ ابلیس نے کہا، یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خوانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے گا۔ لوگوں نے کہا، بہتر ہے آپ بھی آ جائیے۔ چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے سلسلے کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: number one radio station, FM 92.6, UCP की दुनिया, UCP की दुनिया.
1: Alhambra Unplugged, Season 1.

0: कंफर्म करें कि जो आपने मैसेज भेजा है क्या ये आपकी तरफ से है, अगर है तो ये क्या लिंक इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इसे ओपन करूं कि ना करूं, पहली चीज तो ये आ जाती है। रैंसमवेयर जहां से हमने बात की थी कि ये करता क्या है, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है और आपके तमाम डाटा को ये हाइड कर देता है, छुपा देता है, होता आपकी आंखों के सामने लेकिन आप इसे ओपन नहीं कर सकते। तो आपको एक मैसेज आता है कि जी आप इतने पैसे मुझे दें तो मैं जो हूँ वो आपको इसका कोड दूंगा, तब आप इसको ओपन कर सकते हैं।
1: यानी जिसका डेटा है वो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका,
0: वो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका हुआ है। और इससे बचने के लिए एंटीवायरस और रैंसमवेयर जो हैं, यानी कि उससे सेफ साइड के लिए आपको पेड यूज करें, आप उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत करें। देखें मेजॉरिटी हमारे प्रॉब्लम की आती है, हम विंडोज से स्टार्ट करते हैं, विंडोज हम यूज करते हैं पायरेटेड,
1: बिल्कुल
0: ऑफिस हम यूज करते हैं पायरेटेड,
1: बिल्कुल
0: यहाँ तक कोशिश करते हैं कि एंटीवायरस जो है वो भी हम पायरेटेड यूज करें।
1: ऐसे ही है।
0: तो इट्स बेटर कि आप थोड़े से पैसे खर्च कर लें, वन टाइम कॉस्ट है। हाँ, एंटीवायरस जो है वो आपको ईयरली आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, लेकिन अगर एज अ यूनिवर्सिटी की बात करें, स्टूडेंट्स हैं या एम्प्लॉई हैं, आपको जो है यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करती है और एज ए जो ड्राइव चल रही है इनकी एंटीवायरस प्रोग्राम जो प्रोवाइड करते हैं वो कहते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं हमें स्टूडेंट की वेरिफिकेशन दें तो हम आपको भी जो है वो जो चीप प्राइस में या सस्ती प्राइस में हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। तो इट्स ज़रूरी है कि आप जो है अपना जो एंटीवायरस है या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं वो आप वो यूज़ करें जिसका आप पे कर रहे हैं, ताकि आपको सर्विसेज पूरी मिल सकें, आपको अप टू डेट सर्विसेज मिल सकें, ताकि ये जो रैंसमवेयर के अटैक्स हैं ये आप जो है मिनिमाइज आपके हो सकें।
1: अच्छा सर, आपने बात की कि यूसीपी में MFA अप्लाई होता है किसी भी तरह के लॉगिन के लिए, तो सर बैंक्स और ई कॉमर्स के लिए भी होना चाहिए?
0: बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमने बात करी MFA है क्या, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगर हम उर्दू में इसको लेके आए कि बहुत सारे चीज़ों को मिला के आप जो है वो एक कोड जनरेट करते हैं जिसका एक टाइम पीरियड है, वो एक मिनट से लेके पाँच मिनट भी हो सकता है। पाकिस्तान में MFA बड़ी देर के बाद आया, बाहर के मुल्क में स्पेशली UK की अगर बात करें तो UK ने अपने जितने भी बिजनेस अकाउंट होल्डर्स थे बैंकिंग सेक्टर के, उन सारों को एक USB टाइप की एक चाबी दी जिसके अंदर जो की थी वो हर एक या दो सेकंड के बाद चेंज होती थी, उसके बाद उसका टाइम बढ़ा के उन्होंने एक मिनट कर दिया। अब एक मिनट के अंदर 8 डिजिट जो हैं वो चेंज होते हैं और जो एक दफ़ा डिजिट आता है वो दोबारा नहीं आता। इसी तरह MFA जो है ऑथेंटिकेटर जिसको हम कहते हैं वो आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल प्लेसेस पे भी कर सकते हैं, कि जो की वहाँ पे जनरेट हो रही है जब तक वो आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे अपने लॉगिन और पासवर्ड के साथ, जो कि एक नॉर्मल है ही है, क्योंकि अब पासवर्ड की भी अगर देखें तो अल्फा न्यूमेरिक 8 डिजिट के करेक्टर जो हैं वो नॉर्मल हो गए हुए, लेकिन अगर आपने उसको और मजीद आपने करना है तो सबसे पहला स्टेप OTP था। OTP जो क्योंकि वो चेंज हो सकता है तो वो जो है वो किसी के पास भी आ सकता है, लेकिन MFA जिसके साथ सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल है सिर्फ वही उसको कर सकता है, वरना वो चेंज नहीं हो सकता। अगर हम UCP के अंदर बात करें तो UCP के अंदर अभी जो एलुमनाई के इलेक्शन हुए थे उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने उसमें इम्प्लीमेंट करवाई वो था OTP, कि यानी कि अगर आपका वोट है तो आप ही प्लेस कर सकते हैं और बंदा कोई प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन दैट विल गोइंग टू बी ट्रांसफर इंशाल्लाह आगे जाके हम उसको भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे लेके जा रहे हैं।
1: मुझे लग रहा है कि इलेक्शंस में भी इस तरह वोटिंग हो सकती है फ्यूचर में पाकिस्तान
0: इंशाल्लाह।
1: लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी के बारे में और पाकिस्तान इससे किस तरह मुतासिर हो रहा है या पाकिस्तान में कौन से इकदाम करने चाहिए कि इनसे बचा जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सर फराज साहब, उनसे हम अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, अक्सर सुनने में आता है जब हम फ्रॉड्स की बात करते हैं तो फिशिंग का जो जिक्र अक्सर सुनने में आ जाता है, इसके अलावा फ्रॉड कॉल्स होती हैं, तो एक तो हमारे सुनने वालों को इसके बारे में बताएं कि ये होता क्या है और पाकिस्तानी शहरी इसका इतना ज़्यादा शिकार क्यों हो रहे हैं।
4: ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिलेटेड टू टूडेज वर्ल्ड, जो है आज की दुनिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, एक है आपकी सोशल इंजीनियरिंग और एक है आपकी फिशिंग।
3: जी,
4: दोनों अपनी अपनी जगह पे वन वे और दी अदर बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। सो पहले हम बात करेंगे सोशल इंजीनियरिंग की, सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है। इस टॉपिक पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं योर वर्स्ट एनिमी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड।
3: एग्जैक्टली,
4: सुनने में बहुत अजीब लगता है लेकिन ये एक रियलिटी है,
3: क्योंकि सर वो सारे राज उसको हर चीज तो पता ही होती है।
4: बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह जो सोशल इंजीनियरिंग भी इसी तरह ही काम करती है कि आपके साथ एक बंदा बैठेगा, आपसे कुछ अरसा जो है वो आपसे दोस्ती बनाएगा, उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपसे लेगा और उसके बाद आपको वो सलाम अलैकुम करेगा और आपको नुकसान पहुंचा जाएगा।
3: बिल्कुल,
4: ये तो हो गया सोशल इंजीनियरिंग, आपको रीड करके आप ही की इन्फॉर्मेशन लेके आप ही पे इम्प्लीमेंट करना। अब फिशिंग ऑन दी अदर हैंड, ये भी तकरीबन मिलता जुलता ही है इससे कि मुझे आपका ईमेल पता है, मैं आपके ईमेल जो है उससे कॉल करूंगा, आपको ईमेल करूंगा, आपको एक मैसेज भेजूंगा। अब वो ईमेल देखने में तो वो सेम है कि यानी कि वो आपके दोस्त का ही नाम है xyz@xyz.com, लेकिन उस ईमेल एड्रेस के अंदर अगर हम एक डॉट का या एक अंडरस्कोर का या कोई एक छोटा सा भी एडिशन कर देते हैं, वो आप क्योंकि देख रहे होते हैं जल्दी में एक रूटीन के अंदर, तो आपको उसका आइडिया नहीं हो रहा होता कि जी कि ये जो है ये मेरे साथ प्रैंक हो रहा है या मेरे साथ जो है वो मेरे साथ हो रहा है, स्कैम हो रहा है। तो वो जल्दी जल्दी से आप जो है वो उसको करके आपसे ओके करके आप जो भी लिंक आता उसे ओपन कर लेते हैं। कुछ अरसा पहले एक फ्रॉड हुआ और बहुत बड़ा फ्रॉड था जो कि पोस्टल सर्विस के नाम से मशहूर हुआ, आपने डिफरेंट न्यूज चैनल्स पे भी देखा होगा, उसके ऊपर जिक्र हुआ, उसका FIA में बहुत ज़्यादा उसकी कंप्लेंट आई, न्यूज़पेपर जो हमारे हैं नेशनल डेलीज जो हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका जिक्र हुआ। वो था क्या कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पास गए, वहाँ पे आपने लाइसेंस बनवाया और वो लाइसेंस जो है वो क्योंकि पोस्टल सर्विस वाले डिलीवर करते हैं तो आपको एक अननोन बंदे का मैसेज आता है कि जी कि आपका जो है वो पोस्टल एड्रेस जो है वो वेरीफाई नहीं हो रहा, आप इसको क्लिक करें और इसको क्लिक करने के बाद जो है अपना जो है एड्रेस को वेरीफाई करें ताकि आपका जो है वो आ जाए। अब लोगों के जेहन में तो यही था कि जी कि मैंने फलां जगह पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया था, अब वो वेरीफाई हो के लिए मुझे आया तो सारी बात है ये लेजिटमेट है, यानी कि ये बिल्कुल सही है लिंक। तो उन्होंने जैसे इसको क्लिक किया, या तो वो ऑटोमेटिकली उनके बैंक अकाउंट से जितनी लिमिट थी वो पैसे कट गए या जितनी अमाउंट पड़ी थी वो निकल गई, या आपको एक कोड जनरेट हुआ, आपने यही समझा कि ये बिल्कुल सही कोड है, आपने जैसे उसको डाला आपके अकाउंट से पैसे कट गए। अब बैंक उसको ऑन नहीं करता, वो कहता है कि जी कि आपने क्योंकि खुद किया है, हमने तो आपको बड़ी दफा कहा कि जी कि ये मसला आ रहा है आपने नहीं करना, लेकिन सारी बातें लोगों को नहीं पता लगता। तो ये बेसिकली दिस इज व्हाट फिशिंग अटैक इज, के कोई बंदा आपको ये शो कराता है जी कि मैं जेन्युइन पर्सन हूँ और मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ या मैं आपका दोस्त हूँ, मैं बिल्कुल जेन्युइन हूँ, आप इसको क्लिक करें तो सब कुछ ठीक।
3: सर अब तो ये इतना कॉमन हो गया कि नॉर्मली फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, तो अब हमें एक मैसेज मिलता है कि जी आपका एड्रेस जोन सा है ना वो ठीक नहीं है और इस लिंक ओपन करें, आपका जो पार्सल है वो डिलीवर होने की वजह डिले उसमें आ रहा है। तो बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि इस लिंक को ओपन करना है, उनको तो बेताबी होती है कि जी हमारा जो पार्सल है वो डिले हो रहा है, हम फटाफट से इसको क्लिक करें और इसमें डिटेल डालें। तो ये भी मुझे लगता है कि इसी का ही कोई हिस्सा है जो आपने अभी जिक्र किया।
4: मजे की बात आपको ये बताता हूँ कि बड़े पढ़े लिखे लोग इसका शिकार हुए हैं, आपको शायद याद होगा, सुनने में भी आया होगा कि आपको कॉल्स आती हैं कि जी कि मैं फलां पुलिस ऑफिसर बात कर रहा हूँ, आपका सर, बेटा पकड़ा गया है।
3: सर बैंक से भी आती हैं इस तरह की, मतलब बैंक के नंबर को यूज करते हैं और बैंक इसीलिए बार बार आप कहते हैं हम कोई कॉल नहीं करते।
4: जी जी, मैं अब आपको उसका भी बताता हूँ कि अक्सर इसको बल्कि आपको समझाने की इस तरह कोशिश करता हूँ कि एक लाइव आपको बता देता हूँ जो मेरे साथ भी वाकया पेश आया। अगर मेरे पास ये नॉलेज ना होता तो शायद आज मैं भी अपना अकाउंट जो है किसी को दे चुका होता। मैंने बैंक कॉल की, उन्होंने कहा जी हम आपको कॉल बैक करते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है। कुछ टाइम के बाद मुझे घंटे दो घंटे के बाद मुझे कॉल आई, जी मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, तो आप जो हैं मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दें। मैं कहा जी क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? अपना जी नाम बताएं। मैं कहा जी ये नाम, अपना आईडी कार्ड नंबर बताएं। मैं कहा जी अब जब आपके पास मेरी इन्फॉर्मेशन है तो आईडी, नहीं नहीं वो असल में हमने वेरीफाई करना है कि आप ये। मैं कहा जी ओके जी, मेरा आईडी कार्ड नंबर ये है। अब उसने आईडी कार्ड नंबर डाला और उसने कहा जी अच्छा अब अपना अपने वालदा का नाम बताएं। मैं कहा जी मैं क्यों बताऊं? नहीं जी वो तो बताना पड़ेगा, ये हमारे वो टी ओ आर्स हैं, एस ओ पीज हैं, हमें उसके ऊपर करना पड़ेगा। मैं कहा जी मैं तो नहीं बताऊंगा। हाँ ये हो सकता है कहा जी कि मैंने आपका जो बैंक है उसके साथ मैंने टेलीफोन कोड जो है वो जनरेट किया हुआ है, आप उसकी तरफ मुझे ले जाएं। नहीं नहीं जी वो हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। मैं कहा अच्छा चले, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है और आपका एम्प्लॉई कोड क्या है। जी वो हम नहीं दे सकते,
3: उनके पास हर बात का जवाब है।
4: अगर आप नहीं दे सकते और आपका सिस्टम जब ओके हो जाए प्लीज तब मुझे कॉल कीजिएगा। तो वो उसके बाद फिर मुझे दोबारा कॉल नहीं आई, क्योंकि उसको पता है कि ही नोज द सिस्टम कि किस तरह होता है। इसी तरह आपको भी कोई कॉल आती है या आपको भी कोई मैसेज आता है, काइंडली प्लीज आप उस कंपनी को मैसेज करें या आप उसको कॉल करें, क्योंकि कॉल तो अब महंगी नहीं है। व्हाट्सएप के ऊपर नॉर्मली अब हर बंदा व्हाट्सएप
3: पर, अगर महंगी भी हो तो अपने जो
4: सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी है कि आप जो है आप कॉल करके कंफर्म करें। अक्सर होता यह है कि जो मेजोरिटी जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनको ये भी याद नहीं होता कि आपने कहां कहां से चीज मंगवाई हुई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास पार्सल आता है, और ये भी मैंने कई दफा हमने सुना है कि पार्सल के अंदर कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर जैसे खाली डब्बा होता है, चार पांच जो है उसके अंदर वो हैवी कोई चीज रख देते हैं, जिस तरह पत्थर हो गया, इस तरह की चीज होती है, तो वो भी आपको डिलीवर कर देते हैं। आप इसी चक्कर में होते हैं, वो पैसे भी ले जाते हैं सीओडी के चक्कर में, आपको जो
3: है वो लग जाते। पहले तो ओपन करके देख नहीं सकते पेमेंट से पहले,
4: तो इसलिए यू हैव टू कंफर्म कि आपने क्या चीज मंगवाई। आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी चीज आती है या कोई भी बंदा आपके पास आता है तो काइंडली मेक श्योर करें कि आप जो भी चीज मंगवा रहे हैं या किसी से भी ऑनलाइन आप ऑर्डर कर रहे हैं तो वो वैलिड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो प्लीज कोई चीज उनको हैंड ओवर मत करें, और स्पेशली अपनी पर्सनल डिटेल्स जिस तरह आपका नेम है या आपका आईडी कार्ड नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, आपका मदर का नेम है या आपके बहन भाइयों की डिटेल्स है, प्लीज किसी को मत दें, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे।
3: अच्छा सर एक बात और हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि एक तो होता है सर ट्रांजैक्शन जो हम कार्ड्स के थ्रू कर रहे होते हैं, सर उसकी सेफ्टी को हम किस तरह एनहांस कर सकते हैं?
4: देखें जैसा अली एक्सप्रेस है या दराज है, इनके ऊपर तो फिर थोड़ी सी अच्छी चीज़ ये है कि आपने कोई पेमेंट करनी है तो उनमें एज ए मीडिएटर जो है, या अली एक्सप्रेस या दराज वाले वो एज ए मीडिएटर का काम करते हैं कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम आया है तो वो वहीं पर पेमेंट रोक देते हैं, वो पेमेंट आगे नहीं ट्रांसफर करते जब तक दोनों पार्टीज ये नहीं कह देती कि जी कि यस हम दोनों सेटिस्फाई हैं। लेकिन अगर आप हाँ उसके अंदर ये भी है कि जिस तरह आपका फूड पांडा है ये एक सिक्योर साइट है कि वो आपको दोनों ऑप्शंस देती हैं कि आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी ऑनलाइन कर दें, आपने सीओडी करना आप सीओडी कर दें। लेकिन अगर कोई एक्स वाई जी और कंपनी है, अगर वो कहता है कि जी कि नहीं जी मैंने जो है वो पहले पेमेंट करें फिर करूँगा, प्लीज़ उसको मत करें। आप किसी और साइट से जाके परचेज करें जो कि जेन्युइन साइट है। पहले ये श्योर करें कि वो साइट जेन्युइन है, उसके रिव्यूज देखें कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, रिव्यूज आपके ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप उसको पढ़ें। अगर वो कहते हैं कि जी जेन्युइन है फिर आप करें, वरना नहीं। वरना अक्सर होता यह है कि आप क्या करते हैं, आपको एक अटैक है जिसको हम कहते हैं DOS डिनाइल ऑफ सर्विस या DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब ये भी जो है बहुत जो है प्रॉब्लमेटिक है कि जिस तरह नेशनल बैंक की जो वेबसाइट एक दफा हैक हुई, आपका फेसबुक जो है वो हैक हो गया था, वो भी DDoS अटैक के अंदर चला गया था, यानी कि आपका लॉगिन पासवर्ड सारा वही था। सब लोगों ने क्या किया कि फी सबीलिल्लाह अपने लॉगिन पासवर्ड और क्वेश्चंस जो थे वो खुद ही उनको बताए जिसने वो अटैक जनरेट किया था, जी कि हम ये हैं, आपने सब, असल में हमारी प्रॉब्लम लोगों की ये है कि हम सबर नहीं करते। अगर कोई चीज ओपन नहीं हो रही, काइंडली वेट, उसको घंटा, दो घंटे, एक दिन दे दें, कोई इमरजेंसी नहीं है। असल में हम जिस दौर में रहते हैं, हम कहते हैं कि बस इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमें मिल जाए।
3: बिल्कुल, अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है।
4: तो लेकिन कभी कभार ये है कि वो अप टू डेट के चक्कर में आप अपना बहुत कुछ दे देते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो तहमुल का मुजाहरा करना पड़ता है कि जी के कभी कभार आपको वेट कर लें कि जी के शायद हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आ रही हो।
3: सर, हम अगर अपनी रोजमर्रा जिंदगी को देखें तो AI से हम बहुत ज्यादा हेल्प ले रहे हैं, सजेशंस ले रहे हैं, तो सर साइबर क्राइम से बचाने में पाकिस्तान को AI कोई हेल्प कर सकता है?
4: बहुत ज्यादा
3: सर। वो कैसे?
4: देखें, AI जो है, पहली चीज तो ये है कि AI है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप एक प्रोग्राम कोड करते हैं, प्रोग्राम ही है जिसको हम कोडिंग करके ये बता देते हैं कि जी कि अब आपके अगर कोई चीज आ रही है तो उसके अंदर क्या कुछ हो सकता है, आप क्या क्या उसके अंदर कर सकते हैं, और आपने उसको ट्रेन कर देते हैं, और ट्रेन करने के बाद फिर आप जो है उसके अंदर कई चीजें जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे ChatGPT आजकल सबसे ज्यादा है, चाइना की ऐप आई हुई है सेम लाइक ChatGPT, वो करती क्या है, आपसे इन्फॉर्मेशन लेती है और अपने आप को वो एजुकेट कर रही है, और वो एजुकेट इतना उसने आपको करना शुरू कर दिया है कि वो आप उसको कोई भी न्यूमेरिकल देते हैं या कोई भी चीज़ देते हैं तो वो मल्टीपल चीज़ें, ऑप्शंस जो हैं वो आपको बना के दे देती है।
3: बिल्कुल।
4: इसी तरह AI भी जो है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, आप उसको ये ट्रेन अगर कर दें कि अगर ये अटैक होता है तो आपने किस तरह उसको उससे बचना है, तो वो ऑटोमेटिकली उस अटैक के जो है प्रिवेंटेशन शुरू कर देती है। इससे पहले कि अटैक हो, उसको थोड़ा सा भी अगर मिलता है, कोई भी ऐसी चीज मिलती है कि जहां पे उसको लगता है कि जी अटैक जनरेट हो रहा है, तो उसको वहीं पे वो स्टॉप कर देगी। टेक्नोलॉजी यूज करें लेकिन यूज वाइजली, मैं तो ये कहता हूँ टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए लेकिन उसको वाइजली यूज करना चाहिए, ये ना हो कि वही टेक्नोलॉजी आपके अगेंस्ट यूज होनी शुरू हो जाए।
3: अच्छा सर, सुनने वालों को ये भी बताएं कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया कि हम बैकअप जो है स्टोरेज के लिए क्लाउड यूज करते हैं, तो सर क्लाउड किस हद तक सेफ है?
4: जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि जी के आपका जो डाटा है वो प्रॉपरली सेव रहे। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ iCloud की, या मैं एग्जांपल देता हूँ गूगल क्लाउड की, जिसे जी ड्राइव जिसे कहते हैं या वन ड्राइव कहते हैं, अगर वो अपनी सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो भी मल्टी फैक्टर सिक्योरिटी के ऊपर जाते हैं, अगर वो अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस नहीं करेंगे, तो आपका अगर एक दफ़ा डाटा डैमेज हुआ या लीक हुआ, तो क्या आप उसके पास दोबारा जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो वो उन्होंने नॉट ओनली कि आपका एक तो डाटा वो सेव करते हैं, सिक्योर होता है, दूसरा वो लॉगिन पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसके ऊपर काम कर रहा है, तीसरा फायरवॉल्स यूज कर रहे हैं। फायरवॉल क्या है कि आपके इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को वो कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बैकअप्स हैं। देखें, अगर हम यही काम अगर हम खुद करते हैं तो उसके लिए क्या आप एक USB यूज कर लेंगे पासवर्ड लगा के, आप एक XYZ हार्ड ड्राइव यूज कर लेंगे, लेकिन कितना को डाटा आप उस पे सेव कर लेंगे? क्लाउड जो है उसके ऊपर आपकी स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आप जितनी मर्जी चाहे स्पेस ले सकते हैं, आप मिनिमम 1 GB से लेके 1 TB और सो ऑन, जितनी मर्जी आप ले सकते हैं, आप बहुत ज्यादा ले सकते हैं। तो वो एक चीज है कि जहां पे आपके पास ऑप्शन ये है कि आप पैसे कम खर्च करके, बजाय कि आप उसके ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगाएं, आप कम पैसे खर्च करके आप ज्यादा जो है सर्विसेज ले सकते हैं। इसलिए क्लाउड सर्विसेज इज मच बेटर कि आप अपने पास उसको रखें, और पूरी दुनिया में कहीं पे भी हैं आप वहां पे उसे ओपन करें, आपका डाटा जो है वो आपके पास है।
3: लिसनर्स, वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: म्यूजिक बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर फराज अली साहब। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। सर, पाकिस्तानी आवाम जो थ्रेट्स और ये जो स्कैम फेस कर रही है, तो आपके ख्याल में इनको शऊर दिलाने के लिए कोई अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए?
2: बहुत ज़रूरी। रीज़न ये है कि जी के लोगों को इसकी आगाही इतनी नहीं है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ही देख लें कि कितने लोगों को पता है कि साइबर सिक्योरिटी कर क्या रही है आपके साथ, या साइबर के अंदर आप कर क्या रहे हैं। आप इधर अगर एक इंटरव्यू हमारे स्टूडेंट्स का ले लें या फैकल्टी का ले लें, मैं अथॉरिटी से बाहर की बात करूँ मैं, तो कई लोगों को नहीं पता। हमने यहाँ पर बहुत सारी कंप्लेंट्स की भी हैं और कर भी रहे हैं। हम डिफरेंट जो है चीज़ें लोगों को बताते भी हैं कि जी के अब ये थ्रेट है तो आपने किस तरह उसको करना है। स्पेशली स्टूडेंट्स के अंदर जितने भी हमने जो लास्ट हमारे जो बैच इंडक्ट हुआ उसके ऊपर हमने पूरा एक लेक्चर दिया कि स्पेशली लेडीज़ के लिए, जो हमारी नई बच्चियाँ आती हैं यहाँ पे, बेटियाँ आती हैं, कि उन्होंने अपने आप को स्पेशली सिक्योर कैसे करना है।
1: बच्चों बहुत ज़रूरी है, बताओ।
2: बहुत, सबसे ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है। उनके राइट्स बताए हैं कि आपके क्या राइट्स हैं, आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, आप किस किस को रिपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप देखते हैं हुकूमत जो है वो डिफरेंट ड्राइव्स करती है कि जी कि आपने रोड सेफ्टी, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जी कि आपने मोटरबाइक चलानी है तो यू हैव टू वेयर हेलमेट। जो है मोटरबाइक चला रहा वो भी पहने, और जो पीछे बंदा बैठा है जो उसके साथ जो पैसेंजर है वो भी पहने। क्यों? बिकॉज हेड इंजरी से बचा जा सके। बाहर की दुनिया में तो प्रॉपर आपको ड्रेस अप होकर मोटरबाइक चलानी पड़ती है, यहाँ पे तो फिर जो है थोड़ा सा उन्हें हाथ थोड़ा सा वो आस्था रखा हुआ है कि जी कि आप कम अज कम हेलमेट तो यूज़ करें,
1: और वो भी अभी सिर्फ ड्राइवर ही पहन रहे हैं।
2: जी जी, अब गाड़ी के अंदर आपने चलानी है तो यू हैव टू वेयर द सीट बेल्ट। क्यों? खुदा न खास एक्सीडेंट होता है तो आपको कोई मेजर इंजरी ना हो। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको तीन चीज़ें बताती है। पहली चीज़ कि आपने अटैक से बचना कैसे है अगर होता है। दूसरी चीज़, अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश कर रहा है तो कौन कौन से तरीकों से कर सकता है, आपने उससे काउंटर किस तरह करना है, आपने उससे किस तरह बचना है। और तीसरी चीज़, अपनी और अपने दोस्तों की, अपने घर वालों की, अपने अहबाब की जो है उनकी सिक्योरिटी किस तरह रखनी है। और वो अगर आपको पता होगी तब भी आप आगे जो है वो बता सकते हैं, वरना आप नहीं बता सकते। तो ये जो है अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है हमारी। आप
1: सर, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज के लिए तो हम कहते हैं कि जिन्हें साइबर सिक्योरिटी उनके लिए मस्ट है, क्योंकि उनको थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं। अगर सर हम छोटी कंपनीज की बात करें तो उनको भी इसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए?
2: मज़े की बात बताता हूँ आपको इसी सवाल के ऊपर कि हमने एक कंपनी का ऑडिट किया। अब वो कंपनी का ऑडिट हमारे जो उनके जो आईटी हेड थे वो हमें बता रहे थे कि जी कि हमने ये इंस्टॉल किया, हमने ये इक्विपमेंट लगाया, हमने ये इक्विपमेंट लगाया। हम वी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि जी कि ये वाकई बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ऐसे बैठे बैठे एक सिस्टम के ऊपर नज़र पड़ी, वहाँ पर लिखा हुआ था कि पायरेटेड विंडोज़ का साइन आ रहा था एक्टिवेशन का। तो मैंने उससे सवाल किया, मैं कहा बुरा ना माने, क्या आपके जो विंडोज़ है आपके सिस्टम के अंदर वो क्या आप लोगों ने परचेज की हुई है कि आप पायरेटेड यूज़ करें? विंडोज़ का क्या है, ये तो पायरेटेड भी चल जाती है। मैं कहा जी सबसे पहला जो प्रॉब्लम है जो आपके जो जनरेट किया आपने वो यहीं से, आपने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया लेकिन अगर आपका मेन चीज़ ही जहाँ से स्टार्ट होना है अगर वही प्रॉब्लमेटिक है तो ये आगे आप जो मर्जी लगा लें फिर आपकी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है।
1: बिल्कुल
2: सेम केस गोज विद द, चाहे छोटी कंपनी है चाहे बड़ी कंपनी है, इट डजंट मैटर। आपने अपना डाटा सिक्योर करना है, आपने अपने लिए सिक्योर करना है, किसी के लिए नहीं। अगर आपका डाटा लीक हो गया या आपका जो कंपेटिटर है अगर उसके पास आपका डाटा चला गया तो वो तो आपसे ज़्यादा कमा लेगा, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए इन लोगों को अवेयरनेस होनी बड़ी ज़रूरी है कि आप किस तरह अपने आप को सेव कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो यू विल गोइंग टू लूज द बैटल।
1: सर, पाकिस्तान का साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है?
2: बहुत अच्छा। तमाम यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग यूसीपी, हम स्पेशली यूसीपी के अंदर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। हमारा प्रोग्राम जो है बैचलर्स का, और आगे इंशाल्लाह हम उस जो मास्टर्स और पीएचडी के अंदर भी इसमें जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारा जो स्पेसिफिकली फोकस ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स को ये मत बताएं कि जी कि हमने जो है वो सिर्फ पढ़ाना है आपको, हमने इनको ऑन हैंड ट्रेनिंग करवानी है। अगर यूसीपी की बात करें तो वी आर वेरी प्राउड टू से दैट कि हमारी जो यूसीपी की जो फॉरेंसिक की लैब है या साइबर सिक्योरिटी की लैब है, वो पूरे पाकिस्तान में इसको मैच कोई नहीं कर सकता। जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं
1: ज़बरदस्त,
2: वो अभी तक और यूनिवर्सिटीज यूज़ नहीं कर रही। हमने यहाँ पे फ्री कोर्सेज जो अपने स्टूडेंट्स के लिए भी करवाए हैं, और जो सबसे पहला जो हमारा जो हमने बैच निकाला है वो अबाउट 302 स्टूडेंट्स का बैच है, जो कि हमने जो फ्री ऑफ कॉस्ट जिनको हमने ट्रेनिंग कराई है साइबर सिक्योरिटी की। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो यूसीपी है वो कितना अपने स्टूडेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है कि हम लोगों को रख भी रहे हैं, उनको हम अपने स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं। हमने यहाँ पे जो है हैकाथॉन्स भी हमने यहाँ पे कंडक्ट कराई है विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलके, इग्नाइट के साथ मिलके, और हमने यहाँ पे जो लास्ट टाकरा जो हुआ है वहाँ पे भी हमने जो है जो कैच द फ्लैग एक इवेंट होता है साइबर सिक्योरिटी का
1: जी,
2: वो भी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया, और उसको हमने यहाँ पे थर्ड पोजीशन जो है हमारी जो टीम यूसीपी ने जो है वो उसने विन की है।
1: सर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आसान अल्फाज में साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लेन किया।
2: आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और इस टॉपिक पे मुझे बात करने का मौका दिया।
1: आज के शो से हमें ये समझ आया कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ मुस्तकबिल का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे मौजूदा दौर का भी मजबूत साथी है, बस शर्त ये कि हम इसे जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। अगले एपिसोड में हम एक नए टेक्नोलॉजी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए सुनते रहें FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। अल्लाह हाफिज।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

to God. نے حصہ

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6
2: सुनते रहिए
4: السلام علیکم سامعین پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف اور منزل میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کچھ ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ سٹرگل کر کے اچیو کیا ہوتا ہے اور وہ اپنی لرننگ جو ہیں اپنا پروسیس جو ہیں اور اپنی جو فائنڈنگز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہماری جو یوتھ ہے اور ہمارے جو لسنرز ہیں وہ ان سے سیکھتے ہیں اور ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے ہم ایک انسپریشن اور موٹیویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پروسیس بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے کچھ بھی اچیو کیا ان کا پروسیس جانیں تاکہ آپ اس سے ریلیٹ کر سکیں اور اسی مقصد کے لیے ہم بلاتے ہیں مختلف شخصیات کو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مائرہ فاروق مانیکا اور بڑی ڈائیورس قسم کی شخصیت ہیں انہوں نے اکنامکس میں تعلیم حاصل کی ہے سائیکالوجی میں مائنر ہے اس کے علاوہ میمری جو آپ کا اور میرا بہت بڑا ایشو ہے اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے اس کے حوالے سے ان کا کام ہے یہ بتاتی ہیں کہ چیزیں کس طرح سے یاد رکھنی ہیں اور خاص طور پر ایگزام کی چیزیں جو کہ بورنگ بھی ہوتی ہیں اور ہم اسے اتنا یاد رکھنا بھی نہیں چاہتے اور کوشش کرتے ہیں کہ سیمسٹر کے بعد اسے بلا دیں تو اس طرح کی جو میمری ہے اس کو کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے اور کیسے وہ پریکٹسز کیا ہیں جس سے ہم کم از کم ایگزام تک جو ہے وہ میموری ریٹین کر سکیں اس پر بھی بات ہوگی اور انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت موضوع پر جسے اگر آسان الفاظ میں میں کہوں تو آخرت کا جو بعد مرنے کے جو دوبارہ زندہ ہونا ہے جس کو قرآن نے بار بار سائٹ کیا ہے اور ایک مومنوں میں اور کفار میں ایک ڈبیٹ جنگ یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب کوئی مر جائے گا تو زندہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے قرآنک کانٹیکسٹ میں ایک کتاب بھی لکھی ہے تو یہ ساری باتیں ہم ان سے پوچھنے جا رہے ہیں مائرہ کیسی ہیں آپ ویلکم ٹو FM 92.6
5: السلام علیکم تھینک یو فار ہیونگ می میں الحمدللہ
4: ویلکم السلام کیسا لگ رہا ہے مائرہ آپ کو یہ ایک یونیورسٹی کے ریڈیو اسٹیشن آ کے
5: میں کافی مطلب سرپرائز ہوئی ہوں پازیٹیولی سرپرائز میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ مطلب یونیورسٹی کا ہے ریڈیو کیونکہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی یونیورسٹی کا اپنا ریڈیو ہو اور وہ بھی مطلب یا تو اگر یہ کوئی فلم میکنگ کی ہو تو پھر بندہ کہ اچھا چلو پھر یا میوزک کی یونیورسٹی ہو لیکن وہ ایسا بھی نہیں ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگا اور ایکچولی یونیورسٹی بہت اچھی لگی میں پہلی بار آئی ہوں جو پارکنگ ہے بڑی انہوں نے اچھی لائک پلاننگ سے لگ رہا ہے بنائی ہوئی ہے ایم ہی نہیں بنائی ہوئی
4: بالکل ایسے ہی ہے اور پارکنگ کا تو آپ کو پتا ہے کہ سیویئر کرائسس ہے ہمارے یہاں پہ اچھا مائرہ تھوڑا سا بتائیں کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر جب اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اور خاص طور پہ جو تھوڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا تو ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے تو یہ اکنامکس کا تو ہمیں جب اسکول میں پڑھے ہوتے ہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کوئی مائنر سا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے تو یہ اکنامکس تک کا سفر کیسے طے کیا آپ نے
5: یہ سوال آپ کا بڑا اچھا ہے میرا یہ میرے یوزلی جو ڈیسیجنز ہوتے تھے نا ہمیشہ سے ابھی بھی وہ جو اماں ابو کہہ دیں بس وہی کر لو وہ اینڈ پہ ہمیشہ وہی اگر میں کہوں میں نے لیفٹ جانا ہے وہ کہہ نہیں تم رائٹ جاؤ تو ایونچولی لیفٹ میں جا کے میں کہتی تھی ویسے رائٹ ہی جانا چاہیے تھا تو اب اکنامکس میں اس طرح ہوا کہ فار سم ریزن او لیولس میں میرا جناب اکنامکس میں بہت اچھا رزلٹ آیا اے اسٹار آیا پھر جناب اے لیولس میں بھی اے اسٹار ہی تھا तो आप जब यूनिवर्सिटी गए तो उधर आप पहले साल में आपने कोर्सेज करने होते हैं, फिर आप डिसाइड करते हो पहले सेमेस्टर के बाद कि आपने मेजर क्या रखना है अपना। तो इकोनॉमिक्स हफ्ता भी रख सकते हो अगर आपका जीपीए अच्छा हो, 3.2 से ऊपर हो तो फिर आप रख सकते हो, वरना फिर आप पॉलिटिक्स रखो या एंथ्रोपोलॉजी रखो या इस तरह करके। तो मुझे उस वक्त तक इतना तो पता नहीं था कि मुझे क्या शौक है, मुझे पढ़ाई से वैसे ही माजरत के साथ काफी नफरत थी बचपन से ही, तो कभी शौक नहीं था मुझे पढ़ाई का, तो बस था कि करनी है, वो जो होता ना पढ़ गई अब करनी तो है ही, तो किसी में भी कर लो, शौक तो किसी का भी नहीं है। तो अब वो जब जीपीए आया तो वो 3.2 से ऊपर था, तो अब सोच रहे थे क्या रखना है, पॉलिटिकल साइंस रखें, इकोनॉमिक्स रखें, एंथ्रो रखें। तो अम्मी को मेरी हमेशा से ना इकोनॉमिक्स में बड़ी वो नहीं होती थी कि मेरी नहीं इकोनॉमिक्स रखो, वो बड़ी खुश होंगी ना कि इकोनॉमिक्स है और वो भी रख रहा है जो, तो मैं कहा चलो इसमें
4: घर की इकोनॉमिक्स अम्मी चलाती है,
5: नहीं नहीं वो तो अम्मी चलाते हैं
4: अच्छा नहीं प्रैक्टिकली तो अम्मी चला रही होती है,
5: वो तो प्रैक्टिकली तो
4: फाइनेंसर होते हैं,
5: फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स तो अब्बू चला रहे ना वैसे हर चीज, तो वो उनको
4: खजाना तो खुद कमाता नहीं है वो चलाता है, तो घर की वजीरे खाना खजाना
5: नहीं वो तो वही है ना, वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है। तो उन्होंने उनको उनकी बड़ी खुशी थी कि भाई इकोनॉमिक्स अगर मेरी कर लेना बेटी, उनका एक वो जो प्राउडनेस वाली चीज होती, तो उनको खुश करने के लिए मैंने कहा भाई जो भी रखूंगी मुझे कौन सा कोई इंटरनल खुशी किसी में मिलनी है, तो चलो इकोनॉमिक्स ही रख लो। तो वो इस तरह मैंने इकोनॉमिक्स कर लिया, लेकिन थर्ड ईयर में जाके ना मुझे साइकोलॉजी ए लेवल्स में थी, मुझे पसंद थी, लेकिन वहाँ पे ना मेजर नहीं था साइकोलॉजी का, एंड मैं जब कोर्स रखना भी कोई चाहती थी वैसे ही माइनर था, माइनर भी हमारे सेकंड ईयर में इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था, तो कोर्स रखना भी चाहती थी, कोई क्लैश हो जाता था नहीं रखती थी, तो फाइनली थर्ड ईयर में जाके फिर साइकोलॉजी के ना दो कोर्सेज मैंने रख लिए, दो या तीन थे शायद, जिसमें से दो एक ऐसे सर के साथ थे, सबने कहा बेटा तुम्हारा जो अगर जीपीए अल्लाह मैंने तुम्हें दे ही दिया था ना अब तो तुम गई, क्योंकि वो तो कभी नहीं पास करेंगे, वो कर बहुत मुश्किल से ग्रेड देते हैं और सारे उनसे बड़े वो थे। तो मैंने कहा अल्लाह ही मैंने क्या रख ली, मेरी तो बड़ी जान निकली थी और पहले क्विज में मैं फेल भी हो गई थी सिर्फ इसी में कि मैं क्या करूंगी क्या करूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कोर्सेज में उन्होंने मुझे एज दिए और जो तीसरा था उसमें मेरा ए था, मेरा साइकोलॉजी का मेरा 4 ही जीपीए रहा है माइनर में। तो वो उसमें मुझे पता चला अच्छा नहीं मुझे साइकोलॉजी बड़ी पसंद है, मतलब वो बस मजा आया था या शायद मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, इकोनॉमिक्स में इतना वो मजा नहीं आया, मतलब मजा तो लर्निंग तो हुई ऑब्वियसली, लेकिन वो जो एक अटैचमेंट होती है वो मेरी ज्यादा साइकोलॉजी से हुई थी। इकोनॉमिक्स में सफर यही था कि बेसिकली अम्मा को खुश करना था
4: जी। चले अगर आप अपना कोई पर्सनल ऐसे परसूट नहीं था तो फिर अम्मा की खुशी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है।
5: ये मेरे लिए था हिस्सा हमेशा से, जब ए लेवल्स भी ओ लेवल्स में भी मुझे हमेशा होता था मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मतलब क्या फायदा क्या है इसका पढ़ाई का, वो एक क्वेश्चन मेरा ख्याल हर इंसान को ही आता है। तो मैं एक कोई ना कहीं अपने अपने आपको अपने एक रीजन देना होता था, तो मेरे लिए हमेशा से एक चीज मेरे अंदर जो फीड की गई थी ना कि बस अल्लाह मियां खुश, अल्लाह देख रहा है अल्लाह को खुश करना है और अल्लाह को नाराज नहीं करना, बस ये पता होती थी बात। तो जब पढ़ाई कर रहे हैं मैं क्या बिजनेस पढ़ के, मैं कहती थी अल्लाह मियां मैं कल मर गई अल्लाह मियां मुझसे पूछेंगे तुम क्या कर रही थी, मैं कहूंगी जी मैं बिजनेस पढ़ रही थी, अल्लाह मियां कहेंगे तो क्या किया तुमने, क्या मैं जवाब दूंगी। तो हर चीज को वो इंटेंशन कहते हैं ना आपने लिंक करनी है, तो मैं कहती थी मुझे तो इससे कोई नहीं मिल रही ना कोई फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि दिमाग इतना ही था तो मेरी इंटेंशन हमेशा यही होती थी अच्छा इससे अम्मा भी खुश होंगे, अम्मा भी खुश होंगे तो माँ बाप खुश हैं तो अल्लाह मियाँ खुश होंगे, तो मेरी हमेशा से इंटेंशन अल्लाह मियाँ इवेंचुअली अल्लाह मियाँ को खुश करने की होती थी पढ़ाई की, शायद इसलिए नंबर भी आ जाते थे।
4: बड़ी जो है ना मासूम सी और स्ट्रेट सी अप्रोच है,
5: इसलिए नंबर भी आ जाते थे, नंबर भी आ जाते थे और फिर पढ़ाई हो भी जाती थी बैठ के, ये भी नहीं होता था कईयों से नहीं होती पढ़ाई, लेकिन जब ये इंटेंशन हो ना कि अच्छा इस चाहे मैं केमिस्ट्री पढ़ने से भी मुझे पता है अल्लाह मियाँ खुश होंगे क्योंकि अम्मा खुश होंगी, तो वो मोटिवेशन आ जाती थी फिर।
4: बिल्कुल ठीक है। अच्छा मायरा आपने बेल्जियम से भी पॉजिटिव साइकोलॉजी में डिग्री की है या
5: नहीं? बेल्जियम से मैंने एजुकेशनल रिसर्च की।
4: अच्छा एजुकेशनल रिसर्च
5: है और पॉजिटिव साइकोलॉजी की मैंने यूपेन से स्पेशलाइजेशन की है।
4: सही, तो उसका एक्सपीरियंस बताएं बेल्जियम का और यहाँ पढ़ना वहाँ पढ़ना क्या डिफरेंस था उसमें?
5: अच्छा एक तो ये कि लम्स में भी काफी स्ट्रिक्टनेस होती है रिसर्च से रिलेटेड, तो जब बेल्जियम गए तो सबने कहा कि ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे गुजारा नहीं होता लोगों का, कि बड़ी टफ है जी और अगर आपने नहीं किया तो निकल जाएंगे और ये वो जो
4: के बाद। बेल्जियम चूज करने की कोई वजह थी या बस ऐसे ही रैंडम?
5: नहीं नहीं उसकी बड़ी खास वजूहत थी बेल्जियम की, एक तो ये कि इंग्लैंड नहीं था वो क्योंकि हर कोई इंग्लैंड चला जाता है तो मुझे था वहां नहीं जाना, और दूसरा ये कि मुझे वैसे चॉकलेट्स की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मतलब मेरा लोग यहाँ पे चाय शाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, मैं नहीं पीती, कभी भी नहीं, पास भी नहीं गई, लेकिन मैं चॉकलेट्स खाती हूँ, मेरी कैफीन वहां से मिलती है मुझे, तो बेल्जियम की चॉकलेट्स बड़ी मशहूर है। लेकिन उनसे जो सबसे बड़ा वजह है ना वहाँ की, वो है अब्बू के एक फ्रेंड सईद अंकल,
6: सही,
5: वो बचपन से मतलब फैमिली फ्रेंड है, मतलब उस तरह है, तो उनकी बीवी और वो दोनों मतलब हमारी फैमिली फ्रेंड्स की तरह है, तो उन पे अम्मा अबू को बड़ा अंधा विश्वास जैसे कहते हैं ना, वो था, तो वो वहां पे रहते थे, तो उन्होंने भेजना तो मुझे वहीं था जहाँ पे कोई जानने वाला हो, वरना उन्होंने मुझे बाहर बिल्कुल नहीं भेजना था, तो उनकी मेहरबानी, क्योंकि वो थे वहाँ पे, उनको पता है कि ख्याल भी बड़ा करते हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा अच्छा तुम बेल्जियम जा सकती हो।
6: और बेल्जियम में पढ़ने का एक्सपीरियंस
5: बहुत अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है। वहाँ पे जो शहर था वो लूवन था, बहुत छोटा शहर था, 8 किलोमीटर में उसका पूरा वो था, उसका क्या कहते हैं उसको, डायमीटर उसका 8 किलोमीटर का था, तो सोच लें कितना छोटा होगा, और लेकिन वो सारा जो शहर था वो यूनिवर्सिटी ही थी, समझ रहे हैं, तो समझ लें आप एक शहर में रह रहे हैं जो यूनिवर्सिटी है, जहाँ जा रहे हैं स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, और सारे पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पे क्राइम का भी कोई इतना इशू नहीं था, मतलब आप इजीली हर जगह जा रहे हो आ रहे हो, और फिर साथ जहाँ मैं रह रही थी मेरे पीछे यूरोप की सबसे बड़ा ओपन बार था, कि मतलब स्ट्रीट थी वहां पे सिर्फ बार्स ही बार्स होते थे, तो रात को लेट अगर आप मतलब कुछ नहीं करने को, तो मैं वहां जाके ना लोगों की सिर्फ हरकतें देखने लग जाती थी जो लोग करते थे ड्रंक होकर, तो वो एक एक्सपीरियंस मेरे लिए बड़ा अजीब था, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं आप लोगों को देखते ना ड्रंक, वहां पे लोगों को मैं देखती थी कि ये सब बड़े पढ़े लिखे हैं सारे, और इधर ये एक मतलब जानवर फलाना, मतलब कुत्ता बन के फिर रहा है, एक वहां उल्टियां कर रहा है, एक उल्टा खड़ा होके छलांगे मार रहा है,
6: और ये जो यहाँ से जाते हैं वहाँ पे उनकी तहजीब से भी मुतासिर होते हैं, तो फिर उनकी बात तहजीबी से भी बड़ा एक
5: नहीं, और बड़ी डेंजरस चीज है ये, मतलब वो इस, आप मैं अगर चाहती हूँ मैं किसी को भी आराम से उसके सारे वॉलेट खरीद लेके मैं अपने कमरे में, मेरी पूरी कमाई हो जानी थी अगर मैं चाहती तो किसी को भी, और मैं तो ये हैरान थी कि इतना डेंजरस है ये कि लोग अपनी होश खो के सड़कों में फिर रहे हैं आराम से, कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन खैर अल्लाह मियां ने उनकी भी हिफाजत किसी अपने तरीके से की हुई थी, लेकिन मैं ये देखती थी कि ये दुनिया चला रहे हैं, मतलब ये यूरोप है जी रिसर्च का एपिटोम है, तो ये दुनिया चला रहे हैं, तो रात को इनकी हालत देखो सारों की क्या हो जाती, वैसे ही वो देख के हंसी भी आती थी, और जाहिर है ऐसी चीजें देख के फिर आपको रियलाइज होता है कि हमारे मुल्क में ठीक है, मतलब हम इतने परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम इतने भी गए गुजरे नहीं है, और मुझे असल में पाकिस्तान की वर्थ वहाँ जाके ही पता चली थी,
6: बाहर जाके ही वैसे पाकिस्तान की वर्थ मिलती है। मायरा, हमने अपने जो लिसनर्स हैं उनको म्यूजिक से एंटरटेन भी करना है, तो अभी हम लेने जा रहे हैं म्यूजिक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो हमने जिस तरह इंट्रो में कहा था कि हमने लोगों को बताना है कि उन्होंने चीजें याद किस तरह से रखनी है, और आपने हमारे साथ टिप्स शेयर करनी है, तो लिसनर कहीं ना जाइएगा, आपका एक बहुत बड़ा मसला ब्रेक के बाद हल होने वाला है।

0: University Studios, where knowledge is empowerment. This is Lunch 2.6.
1: जी सामीन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूँ आपका मेज़बान अली अशरफ, और आप मायरा फारूक की मज़ेदार बातें सुन रहे थे। अभी हमने इनकी लाइफ के बारे में जाना, और जब हम ब्रेक पर जा रहे थे तो हमने आपसे ही कहा था कि ब्रेक पर आने से, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि चीज़ें याद किस तरह से रखनी है। तो मायरा, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ और पढ़ाता हूँ, तो हम टीचिंग में हमारे दो तीन असेसमेंट के पैरामीटर होते हैं। एक हम एक मेमोरी चेक कर रहे होते हैं बच्चों की, एक हम उसकी एनालिसिस चेक कर रहे होते हैं, और एप्लीकेशन चेक कर रहे होते हैं। हमारा पेपर का भी कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है। तो बच्चों को जो सबसे ज़्यादा मसला आता है वो चीज़ें मेमोराइज करने में आता है। एनालिसिस और एप्लीकेशन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अच्छी कर लेते हैं। तो जब हम कुछ चीज़ें उनकी, क्योंकि मेमोरी भी टेस्ट करनी होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें उनको नॉलेज को मेमोराइज भी करना होता है, तो आप हमारे साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करें लिसनर्स के साथ कि जो उनको उनकी मेमोरी कैसे वो बेहतर कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, मेमोरी तो मैं कहती हूँ सबसे ज़रूरी है। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है ना, आपको चीज़ें याद है, फिर आप एनालिसिस भी तब भी कर सकते हो। अगर आपको चीज ही नहीं आता तो क्या एनालाइज करोगे।
1: बिल्कुल सही।
2: तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी रट्टा लगा लिया है तो जी फायदा नहीं है, मैं कहती हूँ रट्टा भी, और जिनसे मैंने टेक्निक सीखी है, हैरी लोरेन है, वो भी कहते हैं रट्टा इज वेरी गुड, क्योंकि आपको याद तो है ना। एक दफा जब याद हो गया है फिर आप उससे आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलोगे ना। जब आपको याद ही नहीं तो अगला स्टेप पे पहले ही चले जाओ, तो फायदा क्या है फिर।
1: वो मेरे मेरे FSC के क्लास फेलो होते थे, तो वो कहते थे कि यार रट्टा मार लो, समझ भी आ ही जाएगी, और ये हो भी जाता था अक्सर।
2: ऐसे ही हम सारे ऐसे ही बचपन में, सारे लोगों ने ऐसे ही पास किए बचपन में। तो खैर, अब टेक्निक्स तो काफी हैं, लेकिन मैं जो एक इधर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो वन ऑफ माई फेवरेट टेक्निक्स है। तो अब जितनी मैं इन डेप्थ में जा सकती हूँ रेडियो शो में, मैं कोशिश करूंगी। तो वो है जी लिंक सिस्टम, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपने ऑर्डर में याद करनी है कि पहले ये आती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो जी ऑर्डर में कैसे याद रहे, ठीक है। तो ये सिस्टम अगर आप लगाएं ना तो कोई भी चीज़ आपको ऑर्डर में रहेगी, चाहे वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 1000 भी वैसे तो लोग कर लेते हैं, आप 100 भी कर लें तो हम उसी में बड़े खुश हो जाएंगे। तो वो मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि वो एक्चुअली कैसे वर्क करता है। वो ऐसे वर्क करता है कि जी अगर आपने कोई एक चीज़ याद करनी है ना, अब मेमोरी की एक फाउंडेशन होती है बेसिकली। अगर कोई भी चीज़ आपने याद करनी है उसकी एक फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है, वो है एसोसिएशन
1: जी,
2: ठीक है। अगर टू लर्न समथिंग न्यू यू हैव टू एसोसिएट इट विद समथिंग यू ऑलरेडी नो, किसी ऐसी चीज़ के साथ उसे लिंक करते हो, एसोसिएट करते हो, उसका ताल्लुक बनाते हो जिससे आपको ऑलरेडी आप जिस चीज को जानते हो, फिर ही वो नई मेमोरी बनती है। तो एसोसिएशन बहुत जरूरी है, ये आपने अपने दिमाग में भी रखनी है थ्रू आउट दिस, ये ठीक है। और दूसरी चीज जो मैं जल्दी से बता दूंगी कि आप कि हमारा ब्रेन जो है ना वो उसकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है
1: जी,
2: वो आप बता सकते हैं वैसे क्या होगी ब्रेन की प्राइमरी लैंग्वेज, मतलब प्राइमरी जो उसकी मतलब मदर टंग कह लें ब्रेन की, क्या होगी आपके
1: जो हमारी मदर टंग होती है,
2: क्या क्या है आप?
1: पंजाबी।
2: अच्छा, अब मैं एक वर्ड बोलूंगी, ठीक है, आपने वो वर्ड सुन के मुझे बताना है आपके दिमाग में क्या आता है और फौरन से आपने बताना है, ठीक है। ब्लू हॉर्स क्या आता है, जल्दी से बताएं।
1: घोड़ा है,
2: ठीक है, किस तरह का, थोड़ा एक्सप्लेन करें।
1: एक घोड़ा है, उसके जरा थोड़ा सा हटके घोड़ा है, और उसके जो है ना बाल थोड़े से लंबे हैं, वो जो नेक हेयर्स हैं थोड़े से लंबे हैं, वो पतला है और बड़ा खूबसूरत है,
2: ठीक है। और कलर उसका क्या है, नॉर्मल घोड़ा है जैसे नॉर्मल होते हैं? अच्छा, ठीक है। और लाइक रियल लाइफ घोड़ा है कि कार्टून का घोड़ा है?
1: नहीं, रियल लाइफ है,
2: ठीक है। अब आपके, जब मैंने कहा ब्लू हॉर्स तो आपके दिमाग में कहीं ब्लू हॉर्स लिखा हुआ नजर आया?
1: नहीं,
2: आपको पिक्चर आई है ना,
1: पिक्चर आई।
2: तो आपके दिमाग की प्राइमरी जो जुबान है ना वो क्या है, क्या हुई फिर जो images. आपके ब्रेन ने आपको दिखाया, वो आपकी इमेजेस है। हाँ, आप उसको लिख के भी उसे कह सकते हैं कि जी ब्लू हॉर्स है, वो कर लेगा याद सब, लेकिन उसकी प्राइमरी जुबान जो है ना वो है जो हमें सबसे जल्दी समझ आती है। मगर मैं एक लेक्चर आपको पंजाबी में दूं वर्सेस वही लेक्चर एक दफा मैं दूंगी कितना समझ आएगा आपको, वर्सेस वही लेक्चर मैं आपको फ्रेंच में दूं चाहे 100 दफा भी दे दूं, उसमें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो एक दफा के पंजाबी वाले से भी कम होगी।
1: या इवन इंग्लिश हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन हम ज्यादातर उर्दू और समझ भी आ रही होती है पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी, लेकिन उर्दू फिर भी ज्यादा हमें डाइजेस्ट होती है,
2: क्योंकि वो हमारी ज्यादा लाइक सेकंड नहीं तो थर्ड नहीं तो सेकंड लैंग्वेज तो है ना, या फर्स्ट हो। तो इसी तरह ब्रेन की आपकी इमेजेस है, वो फौरन वो आपको, अब मैं आपको जरा इमेजिन करें एक ब्लू कलर का घोड़ा, असल में इमेजिन करें तो आपके माइंड में एक ब्लू घोड़े की पिक्चर आ जाएगी। हालांकि जिंदगी में कभी ब्लू घोड़ा देखा आपने
1: नहीं,
2: लेकिन आपका दिमाग आपको एक
1: घोड़े को ब्लू कर दिया मैंने,
2: तो दिमाग आपको एक सेकंड में दिखा देगा। उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही वो है। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, एसोसिएशन मेमोरी के लिए, और अगर तेजी से याद करना है तो इमेजेस, ठीक है, तो हर चीज की इमेज होनी।

0: मैं क्या है कि जी आपने रोटी और अंडे को मिला देना है, लिंक कर देना है, और एक ऐसी इमेज बनानी है या वीडियो बनानी है मूवी जो बहुत ही अजीब हो, तो लिंक क्योंकि हम इमेज बना लेते हैं, हम लिंक बड़ा वीक बना देते हैं इन पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन का, जिसकी वजह से हम अगर डबल रोटी सोच भी लेंगे ना तो वो उसका लिंक हमें भूल जाएगा क्योंकि वो बड़ा वीक होता है। तो आपने वो उनका स्ट्रांग बनाना है, तो डबल रोटी और अंडे के बीच में अगर आपने एक इमेज बनानी हो अपने माइंड में या पेंट करनी हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप बताएं कोई अजीब सी बताएं इमेज।
1: एक सैंडविच है, उसमें से आधा अंडा निकला हुआ और आधा उसके अंदर है।
0: अच्छा, अब ये एक इमेज है तो सही, लेकिन ये अजीब नहीं है, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया जो मैंने रखा हुआ है ना वो ये होता है कि ऐसी इमेज होनी चाहिए जो रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो अब वो इमेज ऐसी होनी चाहिए जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो ही ना कभी। तो अब वो ये हो सकती है कि मैं सोचूं अच्छा डबल रोटी और अंडा लाना है, तो डबल रोटी है वो जो है ना वो अंडों के पीछे भाग रही है, अंडे भाग रहे हैं मुर्गी की तरह, और वो डबल रोटी पीछे भाग रही है कि मैंने ना तुम्हें पकड़ना है। ये एक इमेज बन गई मेरे दिमाग में, और ये बहुत अजीब सी है क्योंकि रियल लाइफ में कभी भी नहीं डबल रोटी भागती हुई नजर आएगी मुझे अंडों के पीछे। ये पहली होगी। अब लिंक सिस्टम में क्या है, अब तीसरे पे है, तीसरी चीज क्या हो सकती है भाई आप बताएं।
1: सोप।
0: सोप। अब आपने अंडों को और सोप को लिंक करना है आपने। ठीक है भाई, ऐसी इमेज बनानी है जिसमें अंडे और सोप का एसोसिएशन हो, और वो इमेज होनी चाहिए या मूवी होनी चाहिए। तो अब आप बनाएं अंडे और सोप के बीच में कोई अजीब सी एसोसिएशन।
1: अंडे डबल रोटी जो है वो भाग रही है अंडों के पीछे, और सोप उसके ऊपर ऐसे है जैसे क्लाउड होता है, वो क्लाउड ऊपर चल रहा है दोनों के ऊपर।
0: अच्छा चलो, ये आपने उसको भी बीच में लिंक कर दिया, आपने स्टोरी टेलिंग कर दी, ये भी टेक्निक होती है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग भी होती है, और अगर आप नहीं कर रहे तो आप अलग से भी इमेज बना सकते हैं जिसमें बिल्कुल अलग हो कि जी फॉर एग्जांपल आपने इमेजिन किया कि कोई भी किसी इंसान को, बीवी कोई कर ले जिसने आपको काय के लेकर, वो साबुन की जगह ना अंडे से हाथ धो रही है अपने ना, तो वो साबुन की जगह वो इमेज आ गई क्योंकि साबुन की जगह अंडा पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन हम आपकी वाली लेंगे क्योंकि वो आपके माइंड में पहले आई थी, जो पहले आती है ना चीज वो यूज करनी चाहिए, वो जरा तगड़ी होती है। तो आपने अच्छा इमेजिन किया कि जी अंडे भाग रहे हैं और उनके ऊपर सोप जो है वो बादल
1: फ्लोट कर रहा है, जिस तरह
0: बादल बन के जा रहा है, और बारिश भी कोई कर रहा है, तो वो भी आप इमेजिन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सोप को जो थर्ड है उसको अगले फोर्थ से एक और इमेज बनानी है, उसमें सोप और वो होगा। ठीक है, अब फोर्थ जल्दी से कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बॉटल। ठीक है, अब वो आप इमेजिन एक कोई इमेज सोच लें, जी आपकी क्लास में सारे बच्चे हैं, उनके आप उन्होंने कहा जी हम पानी पी रहे हैं, आपने कहा पी लो, तो सब बॉटल की जगह ना सोप निकाल के पीने लग गए। अब ये थोड़ी अजीब चीज है, सोप कैसे पीता है। अब वो आपने अपने माइंड को फोर्स करना है कि इसको इमेजिन करो कि कैसे सारे बच्चे बैठे होंगे, और इसके लिए ना आपने आंखें बंद करनी है। ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट होती है सबको कि एटलीस्ट शुरू में आंखें बंद रखें, क्योंकि उससे आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं, फोकस बढ़ जाता है, और विजुअलाइजेशन करने में हेल्प आपकी होती है। एक दफा आदत हो जाएगी फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, अब लिंक सिस्टम क्या करता है, अब मैं आपसे कहूंगी ना चलें अभी बताएं लिस्ट क्या क्या लेके आनी है एग्जांपल। तो पहली चीज जो थी वो क्या थी, वो यूजुअली हमें याद रहती है प्राइमरी और रिसेंसी इफेक्ट के लिए। तो पहली क्या थी जी, डबल रोटी। दूसरी क्या थी,
1: अंडे।
0: ठीक है, तीसरी क्या थी,
1: सोप,
0: क्योंकि अंडों के, अच्छा, और सोप के साथ चौथी क्या थी,
1: बॉटल।
0: बॉटल। अब मैं इसी तरह 15 और चीजें भी बता दूंगी, आप बॉटल के साथ कुछ और जोड़ दें। ठीक है, वही कुछ और जो है वो आप सिक्स्थ पॉइंट के साथ जोड़ दें, सिक्स्थ सेवन्थ, हर चीज का ना दो लिंक्स बन जो, इसलिए लिंक सिस्टम बोलते हैं। एक चीज का एक अगली से लिंक्ड है, एक पिछली से लिंक्ड है, सिर्फ जो जिसका नहीं होता है एक आगे वो आखिरी चीज है और एक पहली चीज है। पहली चीज का आपने कोई आप कर सकते हैं, आप लोकेशन से लिंक कर सकते हैं जहां पे आपको ऑर्डर दिया गया है कि जी लेके आओ, या जिसने ऑर्डर दिया आप उससे भी कर सकते हैं लिंक। ठीक है, अब इसमें सारी गेम सिर्फ दो चीजों की है, एक इमेज होनी चाहिए जिसको आप गौर से देख सकें, जिसके लिए मैंने आपको कहा आप आंखें बंद करें और जितनी सेंसेस उसमें यूज कर सकते हैं उस इमेज को देखते हुए, कि मतलब उसको देखें भी, उसमें सुने भी कि लोग क्या कह रहे हैं, अगर फील कर सकते हैं इमेजिनेशन में कैसे, जितनी सेंसेस इनकॉर्पोरेट करेंगे उतनी वो इमेज अच्छी तरह इमेजिनेशन बैठेगी। आंखें बंद करें वो पहले बता दिया, और तीसरा जितनी डिटेल आप देख सकते हैं, जब आप बच्चों को देख रहे हैं कि वो सोप निकाल के पी रहे हैं बॉटल, तो वो कैसी बॉटल है, उसके ऊपर कोई डिजाइन बना हुआ है, कोई सोप लिखा हुआ है क्या है, जितनी डिटेल डालेंगे वो आपका माइंड उसको याद रखेगा। ठीक है, और दूसरी चीज जो है वो एसोसिएशन है, कि एसोसिएशन ऐसी होनी चाहिए कि वो अजीबो गरीब हो, कि आप परसों भी मैं आपसे पूछू ना कि बताएं भाई वो डबल रोटी के बाद क्या था, तो आप कहें अच्छा वो अंडों के पीछे भाग रही थी, उसके बाद क्या था, फिर आपको कहें नहीं अच्छा वो ऊपर कुछ चल तो रहा था उसके, क्या था, अच्छा साबुन था, और फिर साबुन के बाद वो होनी इतनी अजीब कि आपको वो ऑटोमेटिकली याद रहेगी। ठीक है, तो
1: दिमाग के झुरमट में गुम ना हो जाए। हाँ, कहीं, वो
0: तो वो

0: मेन प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेजबान अली अशरफ और आपके अपने एफएम 92.6 पर आप इसे सुनते हैं। इसके अलावा इसे आप एंड्रॉयड ऐप और जो आईओएस है उसके ऊपर भी सुन सकते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं मायरा फारूक और ट्रेनर हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी पे काम है। अभी हम इनसे पूछ रहे थे, ऑथर भी हैं, इनसे पूछ रहे थे कि मेमोरी कैसे, चीज़ों को मेमोराइज किया जा सकता है और मेमोरी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए हमने जो ब्रेक से पहले एक टेक्निक सीखी थी वो थी लिंक और एसोसिएशन। मायरा, और कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि हम एम्प्लॉय कर सकते हैं?
1: सो बेसिकली इसी टेक्निक को अगर बेहतर करने के लिए, क्योंकि हमारी एसोसिएशन यूजुअली वीक होती है, तो अगर हमारी एसोसिएशन बेहतर हो जाए ना तो हमारी काफी मेमोरी के मसले हल हो जाए। तो एसोसिएशन बेहतर करने के लिए अपनी जो भी आपने इमेजेस बनाई हुई उनका आपस में लिंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं चार टूल्स आपके साथ जल्दी से शेयर करूंगी, ताकि कोई भी ऐसी कोई भी चाहे ना बैठे बैठे एक अजीबो गरीब एसोसिएशन वो बना सकते हैं। तो पहला टूल जो है, जो मेरा फेवरेट टूल है, जो सबसे ज्यादा मैं यूज करती हूँ, वो है सब्स्टिट्यूशन टूल। ठीक है, तो जिन दो पॉइंट्स को आपने लिंक करना है ना, आप एक को देखें कि वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है, उधर से उसको निकाल दें और दूसरे वाले को डाल दें। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल जो सोप वाला मैंने एक आपको बताया था, सोप और एग का, कि सोप यूजली कहाँ पाया जाता है, सिंक के पास, और वहां से मैंने सोप निकाला और उसकी जगह एग डाल दिया। अब अगर सोप को मैंने जिस भी चीज के साथ लिंक करना हो, वो चीज जब इधर आएगी ना, वो इमेज ऑटोमेटिकली अजीब ही बनेगी। और वो नहीं तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है, जहां एग्स कहाँ पाए जाते हैं, जो भी आपके दिमाग में आता है, अगर आपकी बुक शेल्फ आती है या मुर्गियों का वो जो होता है पूरा वो आता है, या तवा आता है, जिधर जो लोकेशन आपके माइंड में आती है वहां पे अंडा है, वहां से अंडा निकाल के उसकी जगह सोप डाल दें। तो आपको जब आप इमेज में देखेंगे कि है ये क्या, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये अंडे का लिंक सोप के साथ है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट टूल। दूसरा टूल है जी, आप दोनों के बीच में ना कोई एक्शन डालें, दोनों जो आपने इमेजेस बनाई हुई है ना उनके बीच में कोई ऐसा एक्शन डालें जो मतलब नॉर्मल ना हो। तो ज्यादातर अगर इनएनिमेट चीज है तो उनको तो आप उसमें फाइटिंग करा दें, उनकी उनकी रेस लगवा दें, कुछ भी एनीथिंग, मतलब आपस में खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी, तो एनी एक्शन विल, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना एक्शन को याद रखता है, और मगर ऐसा एक्शन जो मतलब ज्यादा आपको अटेंशन ग्रैबिंग भी हो। ठीक है, फिर तीसरा, या इस नाम रेडियो में बैठे हैं कोई जो चीजें, तो वो भी आपको याद रहेगी। तीसरा टूल जो है वो है इंक्रीज नंबर। ठीक है, अब हमारा ब्रेन अगर कोई एक चीज बहुत ज्यादा तादाद में देखता है ना, तो वो इमेज उसको अच्छी तरह याद रहती है। ठीक है, तो अगर दो चीजों को आपने आपस में लिंक करना है तो उनमें से एक की या दोनों की तादाद बढ़ा दें, लाइक मिलियंस एंड ट्रिलियंस में कर दें। ठीक है, तो अगर समझे हमारा जो लास्ट आइटम था वो बॉटल था, तो उसके बाद अगर फर्ज करें बीवी ने कहा चेयर भी लेके आनी है, ठीक है, तो आप इन दोनों में से एक की तादाद आपने बढ़ानी है, तो आप इमेजिन करें कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ चेयर्स आए, अब वो कहाँ आपको नजर आएंगी, जहां भी है स्पेस में है, जमीन में है, वो है, और वो बॉटल के साथ कुछ कर रही है, कोई एक्शन डाल दी, या बॉटल, या वहां पे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बॉटल्स भी, और आपस में उनकी या तो जंग हो रही हो, या सारी चेयर्स जो है वो बॉटल्स को पी रही हैं, या जो भी है बॉटल के ऊपर चढ़ रही है, या बॉटल के अंदर से निकल रही है बहुत ज्यादा चेयर्स, तादाद बढ़ा देनी है। तो जब वो देखेगा ना ब्रेन, वो कहेगा अच्छा भाई ये तो बड़ी अजीब चीज है, तो वो ऑटोमेटिकली उसी वक्त स्टोर हो जाएगी दिमाग में।
0: बिल्कुल।
1: और लास्ट वाला जो है टूल वो है साइज चेंज कर दें, किसी एक चीज को बहुत ही बड़ा कर दें कि आसमान तक वो टच हो रही है। ठीक है, और अगर वो चीज ऑलरेडी बड़ी है तो उसको छोटा कर दें। सो फॉर एग्जांपल अगर सूरज बहुत बड़ा है तो छोटा सूरज इमेजिन कर लें कि कमरे में इधर सूरज लगा है, यू नो, तो उसके नॉर्मल साइज से चेंज
0: कर, टेबल पे पड़ा हुआ छोटा,
1: हाँ, और वाकई उतनी वो हीट आ रही है उसमें, और दिन रात वहीं से ही हो रहा है, तो इतना करें कि जो उसका नॉर्मल साइज है ना उससे या तो बहुत बड़ा कर दें, और अगर वो एक्चुअली बड़ा है तो उसे छोटा कर दें कि देखना वाला क्या यार ये क्या अजीब है, ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा हो।
0: बिल्कुल ठीक है, तो मायरा ये सारी टेक्निक्स तो आपने बता दी। बहुत सारी चीजें होती है जिसे हम टेक्स्ट में याद रखना होता है, जिस तरह एसेज होते हैं या कोई लिटरेचर की चीजें हैं, वो एक कंटिन्यूस टेक्स्ट होता है, तो उसको हम किस तरह से, अब कितनी चीजें हम रिलेट करेंगे, क्या क्या करेंगे, तो हाँ, उसके लिए क्या टेक्निक है?
1: जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन का आंसर याद करना है, उसके 12 पॉइंट है, तो 12 पॉइंट में हर पॉइंट की इमेज बना लेंगे लिखे में लेके, फर्ज करें 12 पैराग्राफ्स हैं एक ही आंसर के, तो वो किस तरह करेंगे, आपका सवाल भी बहुत अच्छा है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है ना, उस पैराग्राफ को आपने एक फ्रेज वर्ड मेमोरी वर्ड बनाना है, ठीक है, टू वर्ड्स या थ्री वर्ड्स के अंदर ना एक फ्रेज बना देना है कि अगर उस पैराग्राफ में अगर येलो बॉटल्स की बात हो रही है, ठीक है, तो आपने उसका नाम लिख देना येलो बॉटल्स, ठीक है, और उसकी फिर एक इमेज बना देनी है येलो बॉटल्स की. अगर आपने एक स्टेप अहेड जाना है तो उस पैराग्राफ में जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो अक्सर कोई भी नहीं याद रखता, उनकी जब आप इमेज बनाएंगे तो उस येलो बॉटल वाली इमेज में ही कहीं वो डाल दें, ठीक है. फॉर एग्जांपल येलो बॉटल्स के साथ अगर एलिफेंट्स की बात हो रही है छोटी सी, तो इमेजिन कर लें बॉटल के ऊपर एलिफेंट बना हुआ है या एक एलिफेंट बॉटल पी रहा है, इस तरह की डिटेल आपने उस फ्रेज वर्ड में डाल दी, वो एक इमेज आपकी बन गई. फिर दूसरे पैराग्राफ में आपने यही प्रोसेस करना है, और दूसरे पैराग्राफ की जो इमेज है उसको फिर आपने फर्स्ट से लिंक सिस्टम की तरह लिंक कर देना है, और इसी तरह फिर थर्ड पैराग्राफ की जो इमेज होगी उसको सेकंड से लिंक कर देना है. इस तरह करते करते आपको पूरा वो याद हो जाएगा. और इसका एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे देना चाहूंगी, मतलब किसी ने जो फीडबैक दिया था वो मेरी कजन ही है. वो स्कूल में ना वो जो बच्चे होते हैं ना जो बस दुआओं से ही चल रहे होते हैं, वो ऐसी ही थी. तो उसे भी मैंने कराई तो मेरे पास आई एक दिन, उसको इंटरेस्ट हुआ बड़ा, उसने कहा ये मेरा सवाल है मुझे बताएं, एक बड़ा लंबा सवाल था. तो हमने यही वाली टेक्निक उस पर लगा दी. एग्जाम था उसका कोई 2 महीने बाद मेरा ख्याल है, उसके बाद उसने उसको कभी हाथ नहीं लगाया. उसने कहा ऐसा टॉपिक आता ही नहीं कभी, लेकिन मैं वैसे ही वो महीने बाद एग्जाम था, अब वो आ गया टॉपिक वही वाला, बिल्कुल वही सवाल आ गया. तो वो ये कहती है कि मैं ना, मैंने कहा ओहो ये तो वो है, कहती मेरे माइंड में पक्का था कि मुझे तो याद ही नहीं आएगा जो मैंने किया हुआ था. कहती लेकिन ना बीच में एक पॉइंट मुझे याद आ गया, एक तो आ ही जाता है अगर 10 पॉइंट है तो, एक कहती मेरे माइंड में ना मुझे याद आया. तो कहती हुआ ये को एक की वजह से, क्योंकि लिंक बने हुए थे ना, वो पिछले भी याद आ गए और अगले भी याद, और कहती वो आ ही जाए. और मैं थी कि मैं जल्दी से लिख लूँ कहीं मैं भूल ना जाऊँ, हालांकि उसी वक्त याद आ रहे हैं, एग्जाम में उसको टेंशन शुरू होगी सारे याद आ रहे हैं मैं कहाँ लिखूँ. तो वो माशाल्लाह उसने बड़े अच्छे नंबरों से फिर वो पास किया. तो जब उसने मुझे ये बताया ना, तो फिर मुझे हुआ कि नहीं भाई ये जो
0: tested,
1: है ना टेस्टेड
0: हो गई.
1: वो तो मैंने अपनी बहन पे भी टेस्ट करी थी शुरू में, फिर अब तो माशाल्लाह मतलब काफी स्टूडेंट्स और काफी लोगों से फीडबैक मिला था, लेकिन ये वन ऑफ द फर्स्ट फीडबैक्स ना आपको याद रहता है.
0: बिल्कुल ठीक
1: तो ऐसे था.
0: अच्छा मायरा, प्रोग्राम में अब हम लेने जा रहे हैं म्यूजिक ब्रेक, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो एक किताब जो कि बड़ा एक मौलवियाना किस्म का टॉपिक है कि मरने के बाद हम उठ पाएंगे या नहीं, कुरान इसके बारे में क्या कहता है, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. सामीन हमारे साथ रहिएगा, हम लेने जा रहे हैं एक म्यूजिक ब्रेक.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6

0: ये है पाकिस्तान की आवाज UCP रेडियो FM 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ कर

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
3: دو پتے پتجھڑ کے पेड़ों से उतरे थे फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं? जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं, इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: अल्हम्रा अनप्लग्ड सीजन 1।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Gentlemen, may I have your attention, please? सुनना है तो इसे सुनो।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: अब्बा मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है, बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: द आवाज दे द लाहौर, द आवाज दे द यूसीपी नु आवरे FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.

0: न्यूज मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में

www.musicfeed.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

आप अपने खानदान को कैसा मुस्तकबिल देना चाहेंगे? फैसला अमल के साथ, कल नहीं आज, आज नहीं अभी। वसाइल और कुंबे के अफराद में तवाजुन रखकर माँ बच्चे की अच्छी सेहत, बच्चों की तालीम और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। रोशन मुस्तकबिल की है पहचान, मतवाजन कुंबा, खुशहाल पाकिस्तान।

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी के बारे में और पाकिस्तान इससे किस तरह मुतासिर हो रहा है या पाकिस्तान में कौन से इकदाम करने चाहिए कि इनसे बचा जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सर फराज साहब, उनसे हम अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, अक्सर सुनने में आता है जब हम फ्रॉड्स की बात करते हैं तो फिशिंग का जो जिक्र अक्सर सुनने में आ जाता है, इसके अलावा फ्रॉड कॉल्स होती हैं, तो एक तो हमारे सुनने वालों को इसके बारे में बताएं कि ये होता क्या है और पाकिस्तानी शहरी इसका इतना ज़्यादा शिकार क्यों हो रहे हैं।
4: ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिलेटेड टू टूडेज वर्ल्ड, जो है आज की दुनिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, एक है आपकी सोशल इंजीनियरिंग और एक है आपकी फिशिंग।
3: जी,
4: दोनों अपनी अपनी जगह पे वन वे और दी अदर बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। सो पहले हम बात करेंगे सोशल इंजीनियरिंग की, सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है। इस टॉपिक पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं योर वर्स्ट एनिमी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड।
3: एग्जैक्टली,
4: सुनने में बहुत अजीब लगता है लेकिन ये एक रियलिटी है,
3: क्योंकि सर वो सारे राज उसको हर चीज तो पता ही होती है।
4: बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह जो सोशल इंजीनियरिंग भी इसी तरह ही काम करती है कि आपके साथ एक बंदा बैठेगा, आपसे कुछ अरसा जो है वो आपसे दोस्ती बनाएगा, उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपसे लेगा और उसके बाद आपको वो सलाम अलैकुम करेगा और आपको नुकसान पहुंचा देगा।
3: बिल्कुल,
4: ये तो हो गया सोशल इंजीनियरिंग, आपको रीड करके आप ही की इन्फॉर्मेशन लेके आप ही पे इम्प्लीमेंट करना। अब फिशिंग ऑन दी अदर हैंड, ये भी तकरीबन मिलता जुलता ही है इससे कि मुझे आपका ईमेल पता है, मैं आपके ईमेल जो है उससे कॉल करूंगा, आपको ईमेल करूंगा, आपको एक मैसेज भेजूंगा। अब वो ईमेल देखने में तो वो सेम है कि यानी कि वो आपके दोस्त का ही नाम है xyz@xyz.com, लेकिन उस ईमेल एड्रेस के अंदर अगर हम एक डॉट का या एक अंडरस्कोर का या कोई एक छोटा सा भी एडिशन कर देते हैं, वो आप क्योंकि देख रहे होते हैं जल्दी में एक रूटीन के अंदर, तो आपको उसका आइडिया नहीं हो रहा होता कि जी कि ये जो है ये मेरे साथ प्रैंक हो रहा है या मेरे साथ जो है वो मेरे साथ हो रहा है, स्कैम हो रहा है। तो वो जल्दी जल्दी से आप जो है वो उसको करके आपसे ओके करके आप जो भी लिंक आता है ओपन कर लेते हैं। कुछ अरसा पहले एक फ्रॉड हुआ और बहुत बड़ा फ्रॉड था जो कि पोस्टल सर्विस के नाम से मशहूर हुआ, आपने डिफरेंट न्यूज चैनल्स पे भी देखा होगा, उसके ऊपर जिक्र हुआ, उसका FIA में बहुत ज़्यादा उसकी कंप्लेंट आई, न्यूज़पेपर जो हमारे हैं नेशनल डेलीज जो हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका जिक्र हुआ। वो था क्या कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पास गए, वहाँ पे आपने लाइसेंस बनवाया और वो लाइसेंस जो है वो क्योंकि पोस्टल सर्विस वाले डिलीवर करते हैं तो आपको एक अननोन बंदे का मैसेज आता है कि जी कि आपका जो है वो पोस्टल एड्रेस जो है वो वेरीफाई नहीं हो रहा, आप इसको क्लिक करें और इसको क्लिक करने के बाद जो है अपना जो है एड्रेस को वेरीफाई करें ताकि आपका जो है वो आ जाए। अब लोगों के जेहन में तो यही था कि जी कि मैंने फलां जगह पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया था, अब वो वेरीफाई हो के लिए मुझे आया तो सारी बात है ये लेजिटमेट है, यानी कि ये बिल्कुल सही है लिंक। तो उन्होंने जैसे इसको क्लिक किया, या तो वो ऑटोमेटिकली उनके बैंक अकाउंट से जितनी लिमिट थी वो पैसे कट गए या जितनी अमाउंट पड़ी थी वो निकल गई, या आपको एक कोड जनरेट हुआ, आपने यही समझा कि ये बिल्कुल सही कोड है, आपने जैसे उसको डाला आपके अकाउंट से पैसे कट गए। अब बैंक उसको ऑन नहीं करता, वो कहता है कि जी कि आपने क्योंकि खुद किया है, हमने तो आपको बड़ी दफा कह के जी कि ये मसला आ रहा है आपने नहीं करना, लेकिन सारी बात है लोगों को नहीं पता लगता। तो ये बेसिकली दिस इज व्हाट फिशिंग अटैक इज, कि कोई बंदा आपको ये शो कराता है जी कि मैं जेन्युइन पर्सन हूँ और मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ या मैं आपका दोस्त हूँ, मैं बिल्कुल जेन्युइन हूँ, आप इसको क्लिक करें तो सब कुछ ठीक।
3: सर अब तो ये इतना कॉमन हो गया कि नॉर्मली फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, तो अब हमें एक मैसेज मिलता है कि जी आपका एड्रेस जोन है ना वो ठीक नहीं है और इस लिंक ओपन करें, आपका जो पार्सल है वो डिलीवर होने की वजह डिले उसमें आ रहा है। तो बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि इस लिंक को ओपन करना है, उनको तो बेताबी होती है कि जी हमारा जो पार्सल है वो डिले हो रहा है, हम फटाफट से इसको क्लिक करें और इसमें डिटेल डालें। तो ये भी मुझे लगता है कि इसी का ही कोई हिस्सा है जो आपने अभी जिक्र किया।
4: मजे की बात आपको ये बताता हूँ कि बड़े पढ़े लिखे लोग इसका शिकार हुए हैं, आपको शायद याद होगा, सुनने में भी आया होगा कि आपको कॉल्स आती हैं कि जी कि मैं फलां पुलिस ऑफिसर बात कर रहा हूँ, आपका बेटा पकड़ा गया है।
3: सर बैंक से भी आती है इस तरह की, मतलब बैंक के नंबर को यूज करते हैं और बैंक इसीलिए बार बार आप कहते हैं हम कोई कॉल नहीं करते।
4: जी जी, मैं अब आपको उसका भी बताता हूँ कि अक्सर इसको बल्कि आपको समझाने की इस तरह कोशिश करता हूँ कि एक लाइव आपको बता देता हूँ जो मेरे साथ भी वाकया पेश आया। अगर मेरे पास ये नॉलेज ना होता तो शायद आज मैं भी अपना अकाउंट जो है किसी को दे चुका होता। मुझे मैंने बैंक कॉल की, उन्होंने कहा जी हम आपको कॉल बैक करते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है। कुछ टाइम के बाद मुझे घंटे दो घंटे के बाद मुझे कॉल आई, जी मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, तो आप जो हैं मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दें। मैं कहा जी क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? अपना जी नाम बताएं। मैं कहा जी ये नाम, अपना आईडी कार्ड नंबर बताएं। मैं कहा जी अब जब आपके पास मेरी इन्फॉर्मेशन है तो आईडी, नहीं नहीं वो असल में हमने वेरीफाई करना है कि आप ये। मैं कहा जी ओके जी मेरा आईडी कार्ड नंबर ये है। अब उसने आईडी कार्ड नंबर डाला और उसने कहा जी अच्छा अब अपना अपने वालदा का नाम बताएं। मैं कहा जी मैं क्यों बताऊं? नहीं जी वो तो बताना पड़ेगा, ये हमारे वो टी ओ आर्स हैं, एस ओ पीज हैं, हमें उसके ऊपर करना पड़ेगा। मैं कहा जी मैं तो नहीं बताऊंगा। हाँ ये हो सकता है कि जी कि मैंने आपका जो बैंक है उसके साथ मैंने टेलीफोन कोड जो है वो जनरेट किया हुआ है, आप उसकी तरफ मुझे ले जाएं। नहीं नहीं जी वो हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। मैं कहा अच्छा चलें, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है और आपका एम्प्लॉय कोड क्या है। जी वो हम नहीं दे सकते,
3: उनके पास हर बात का जवाब है।
4: अगर आप नहीं दे सकते और आपका सिस्टम जब ओके हो जाए प्लीज तब मुझे कॉल कीजिएगा। तो वो उसके बाद फिर मुझे दोबारा कॉल नहीं आई, क्योंकि उसको पता है कि ही नोज द सिस्टम कि किस तरह होता है। इसी तरह आपको भी कोई कॉल आती है या आपको भी कोई मैसेज आता है, काइंडली प्लीज आप उस कंपनी को मैसेज करें या आप उसको कॉल करें, क्योंकि कॉल तो अब महंगी नहीं है। व्हाट्सएप के ऊपर नॉर्मली अब हर बंदा व्हाट्सएप
3: अगर महंगी भी हो तो अपने जो
4: सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी है कि आप जो है आप कॉल करके कंफर्म करें। अक्सर होता यह है कि जो मेजोरिटी जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनको ये भी याद नहीं होता कि आपने कहां कहां से चीज मंगवाई हुई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग
3: जी।
4: और होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास पार्सल आता है, और ये भी मैंने कई दफा हमने सुना है कि पार्सल के अंदर कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर जैसे खाली डब्बा होता है, चार पांच जो है उसके अंदर वो हैवी कोई चीज रख देते हैं, जिस तरह पत्थर हो गया, जिस तरह की चीज होती है, तो वो भी आपको डिलीवर

0: नेम है या आपके बहन भाइयों की डिटेल्स है, प्लीज किसी को मत दें, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे।
1: अच्छा सर, एक बात और हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि एक तो होता है सर ट्रांजैक्शन जो हम कार्ड्स के थ्रू कर रहे होते हैं, सर उसकी सेफ्टी को हम किस तरह एनहांस कर सकते हैं?
0: देखें, जैसा अली एक्सप्रेस है या दराज है, इनके ऊपर तो फिर थोड़ी सी अच्छी चीज़ ये है कि आपने कोई पेमेंट करनी है तो उनमें एज ए मीडिएटर जो है, या अली एक्सप्रेस या दराज वाले, वो एज ए मीडिएटर का काम करते हैं कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम आया है तो वो वहीं पे पेमेंट रोक देते हैं, वो पेमेंट आगे नहीं ट्रांसफ़र करते जब तक दोनों पार्टीज ये नहीं कह देती कि जी कि यस हम दोनों सेटिस्फाई हैं। लेकिन अगर आप हाँ, उसके अंदर ये भी है कि जिस तरह आपका फूड पांडा है, ये एक सिक्योर साइट है कि वो आपको दोनों ऑप्शंस देती हैं कि आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी ऑनलाइन कर दें, आपने सीओडी करना आप सीओडी कर दें। लेकिन अगर कोई एक्स वाई जी और कंपनी है, अगर वो कहता है कि जी कि नहीं जी मैंने जो है वो पहले पेमेंट करें फिर करूँगा, प्लीज़ उसको मत करें, आप किसी और साइट से जाके परचेज करें जो कि जेन्युइन साइट है। पहले ये श्योर करें कि वो साइट जेन्युइन है, उसके रिव्यूज़ देखें कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, रिव्यूज आपके ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप उसको पढ़ें। अगर वो कहते हैं कि जी जेन्युइन है फिर आप करें, वरना नहीं। वरना अक्सर होता यह है कि आप क्या करते हैं, आपको एक अटैक है जिसको हम कहते हैं DOS डिनाइल ऑफ सर्विस या DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब ये भी जो है बहुत जो है प्रॉब्लमेटिक है कि जिस तरह नेशनल बैंक की जो वेबसाइट एक दफ़ा हैक हुई, आपका फेसबुक जो है वो हैक हो गया था, वो भी DDoS अटैक के अंदर चला गया था, यानी कि आपका लॉगिन पासवर्ड सारा वही था। सब लोगों ने क्या किया कि फी सबीलिल्लाह अपने लॉगिन पासवर्ड और क्वेश्चंस जो थे वो खुद ही उनको बताए जिसने वो अटैक जनरेट किया था कि जी कि हम ये हैं। आपने सब असल में हमारी प्रॉब्लम लोगों की ये है कि हम सब्र नहीं करते, अगर कोई चीज़ ओपन नहीं हो रही काइंडली वेट, उसको घंटा दो घंटे एक दिन दे दें, कोई इमरजेंसी नहीं है। असल में हम जिस दौर में रहते हैं हम कहते हैं कि बस इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमें मिल जाए,
1: बिल्कुल, और अपडेट रहना बहुत जरूरी
0: हाँ जी
1: है।
0: तो लेकिन कभी कभार ये है कि वो अपडेट के चक्कर में आप अपना बहुत कुछ दे देते, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो तहमुल का मुजाहरा करना पड़ता है कि जी कि कभी कभार आपको वेट कर लें कि जी कि शायद हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आ रही हो।
1: सर हम अगर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को देखें तो AI से हम बहुत ज़्यादा हेल्प ले रहे हैं, सजेशंस ले रहे हैं, तो सर साइबर क्राइम से बचाने में पाकिस्तान को AI कोई हेल्प कर सकता है?
0: बहुत ज़्यादा
1: सर। वो कैसे?
0: देखें, AI जो है, पहली चीज़ तो ये है कि AI है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप एक प्रोग्राम कोड करते हैं, प्रोग्राम ही है जिसको हम कोडिंग करके ये बता देते हैं कि जी कि अब आपके अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसके अंदर क्या कुछ हो सकता है, आप क्या क्या उसके अंदर कर सकते हैं, और आपने उसको ट्रेन कर देते हैं, और ट्रेन करने के बाद फिर आप जो है उसके अंदर कई चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे ChatGPT आजकल सबसे ज़्यादा है, चाइना की ऐप आई हुई है सेम लाइक ChatGPT, वो करती क्या है, आपसे इन्फॉर्मेशन लेती है और अपने आप को वो एजुकेट कर रही है, और वो एजुकेट इतना उसने आपको करना शुरू कर दिया है कि वो आप उसको कोई भी न्यूमेरिकल देते हैं या कोई भी चीज़ देते हैं तो वो मल्टीपल चीज़ें ऑप्शंस जो हैं वो आपको बना के दे देती है।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह AI भी जो है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, आप उसको ये ट्रेन अगर कर दें कि अगर ये अटैक होता है तो आपने किस तरह उसको उससे बचना है, तो वो ऑटोमेटिकली उस अटैक के जो है प्रिवेंटेशन शुरू कर देती है। इससे पहले कि अटैक हो, उसको थोड़ा सा भी अगर मिलता है कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है कि जहाँ पे उसको लगता है कि जी अटैक जनरेट हो रहा है, तो उसको वहीं पे वो स्टॉप कर देगी। टेक्नोलॉजी यूज़ करें लेकिन यूज़ वाइजली, मैं तो ये कहता हूँ टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए लेकिन उसको वाइजली यूज़ करना चाहिए, ये ना हो कि वही टेक्नोलॉजी आपके अगेंस्ट यूज़ होनी शुरू हो जाए।
1: अच्छा सर, सुनने वालों को ये भी बताएं कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया कि हम बैकअप जो है स्टोरेज के लिए क्लाउड यूज़ करते हैं, तो सर क्लाउड किस हद तक सेफ है?
0: जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि जी कि आपका जो डाटा है वो प्रॉपरली सेव रहे। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ iCloud की, या मैं एग्जांपल देता हूँ गूगल क्लाउड की जिसे जी ड्राइव जिसे कहते हैं या वन ड्राइव कहते हैं, अगर वो अपनी सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो भी मल्टी फैक्टर सिक्योरिटी के ऊपर जाते हैं, अगर वो अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस नहीं करेंगे तो आपका अगर एक दफ़ा डाटा डैमेज हुआ या लीक हुआ तो क्या आप उसके पास दोबारा जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो वो उन्होंने नॉट ओनली कि आपका एक तो डाटा वो सेव करते हैं, सिक्योर होता है, दूसरा वो लॉगिन पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसके ऊपर काम कर रहा है, तीसरा फायरवॉल्स यूज कर रहे हैं। फायरवॉल क्या है कि आपके इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को वो कंट्रोल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: फिर उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बैकअप्स हैं। देखें, अगर हम यही काम अगर हम खुद करते हैं तो उसके लिए क्या

0: आप एक USB यूज कर लेंगे पासवर्ड लगा के, आप एक XYZ हार्ड ड्राइव यूज कर लेंगे, लेकिन
1: जी
0: कितना को डाटा आप उसमें सेव कर लेंगे? क्लाउड जो है उसके ऊपर आपकी स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आप जितनी मर्जी चाहे स्पेस ले सकते हैं, आप मिनिमम 1 GB से लेके 1 TB और सो ऑन, जितनी मर्जी आप ले सकते हैं, आप बहुत ज्यादा ले सकते हैं। तो वो एक चीज है कि जहां पे आपके पास ऑप्शन ये है कि आप पैसे कम खर्च करके, बजाय कि आप उसके ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगाएं, आप कम पैसे खर्च करके आप ज्यादा जो है सर्विसेज ले सकते हैं। इसलिए क्लाउड सर्विसेज इज मच बेटर कि आप अपने पास उसको रखें, और पूरी दुनिया में कहीं पे भी हैं आप वहां पे उसे ओपन करें, आपका डाटा जो है वो आपके पास है।
1: लिसनर्स, वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक में जाने से पहले हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर फराज अली साहब। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। सर, पाकिस्तानी आवाम जो थ्रेट्स और ये जो स्कैम फेस कर रही है, तो आपके ख्याल में इनको शऊर दिलाने के लिए कोई अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए?
2: बहुत ज़रूरी। रीज़न ये है कि जी के लोगों को इसकी आगाही इतनी नहीं है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ही देख लें कि कितने लोगों को पता है कि साइबर सिक्योरिटी कर क्या रही है आपके साथ, या साइबर के अंदर आप कर क्या रहे हैं। आप इधर अगर एक इंटरव्यू हमारे स्टूडेंट्स का ले लें या फैकल्टी का ले लें, मैं एफओआईटी से बाहर की बात करूँ, मैं तो कई लोगों को नहीं पता। हमने यहाँ पे बहुत सारी कंपेन्स की भी हैं और कर भी रहे हैं। हम डिफरेंट जो है चीज़ें लोगों को बताते भी हैं कि जी कि अब ये थ्रेट है तो आपने किस तरह उसको करना है। स्पेशली स्टूडेंट्स के अंदर जितने भी हमने जो लास्ट हमारे जो बैच इंडक्ट हुआ उसके ऊपर हमने पूरा एक लेक्चर दिया कि स्पेशली लेडीज़ के लिए, जो हमारी नई बच्चियाँ आती हैं यहाँ पे, बेटियाँ आती हैं, कि उन्होंने अपने आप को स्पेशली सिक्योर कैसे करना है।
1: बच्चों बहुत ज़रूरी है,
2: बहुत सबसे ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है। उनके राइट्स बताए हैं कि आपके क्या राइट्स हैं, आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, आप किस किस को रिपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप देखते हैं हुकूमत जो है वो डिफरेंट ड्राइव्स करती है कि जी कि आपने रोड सेफ्टी, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जी कि आपने मोटरबाइक चलानी है तो यू हैव टू वेयर हेलमेट। जो है मोटरबाइक चला रहा है वो भी पहने, और जो पीछे बंदा बैठा है जो उसके साथ जो पैसेंजर है वो भी पहने। क्यों? बिकॉज हेड इंजरी से बचा जा सके। बाहर की दुनिया में तो प्रॉपर आपको ड्रेसअप होकर मोटरबाइक चलानी पड़ती है, यहाँ पर तो फिर जो है थोड़ा सा उन्होंने हाथ थोड़ा सा वास्ता रखा हुआ है कि जी कि आप कम अज़ कम हेलमेट तो यूज़ करें,
1: और वो भी अभी सिर्फ ड्राइवर ही पहन।
2: जी जी, अब गाड़ी के अंदर आपने चलानी है तो यू हैव टू वेयर द सीट बेल्ट। क्यों? खुदा न खास एक्सीडेंट होता है तो आपको कोई मेजर इंजरी ना हो। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको तीन चीज़ें बताती है। पहली चीज़ कि आपने अटैक से बचना कैसे है अगर होता है। दूसरी चीज़, अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश कर रहा है तो कौन कौन से तरीकों से कर सकता है, आपने उससे काउंटर किस तरह करना है, आपने उससे किस तरह बचना है। और तीसरी चीज़, अपनी और अपने दोस्तों की, अपने घर वालों की, अपने अहबाब की जो है उनकी सिक्योरिटी किस तरह रखनी है। और वो अगर आपको पता होगी तब भी आप आगे जो है वो बता सकते हैं, वरना आप नहीं बता सकते। तो ये जो है अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है हमारी। आप
1: सर, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज के लिए तो हम कहते हैं कि जिन्हें साइबर सिक्योरिटी उनके लिए मस्ट है, क्योंकि उनको थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं। अगर सर हम छोटी कंपनीज की बात करें तो उनको भी इसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए?
2: मज़े की बात बताता हूँ आपको इसी सवाल के ऊपर कि हमने एक कंपनी का ऑडिट किया। अब वो कंपनी का ऑडिट हमारे जो उनके जो आईटी हेड थे वो हमें बता रहे थे कि जी कि हमने ये इंस्टॉल किया, हमने ये इक्विपमेंट लगाया, हमने ये इक्विपमेंट लगाया। हम वी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि जी कि ये वाकई बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ऐसे बैठे बैठे एक सिस्टम के ऊपर नज़र पड़ी, वहाँ पर लिखा हुआ था कि पायरेटेड विंडोज़ का साइन आ रहा था एक्टिवेशन का। तो मैंने उससे सवाल किया, मैं कहा बुरा ना माने, क्या आपके जो विंडोज़ है आपके सिस्टम के अंदर वो क्या आप लोगों ने परचेज की हुई है कि आप पायरेटेड यूज़ करें? विंडोज़ का क्या है, ये तो पायरेटेड भी चल जाती है। मैं कहा जी सबसे पहला जो प्रॉब्लम है जो आपके जो जनरेट किया आपने वो यहीं से, आपने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया लेकिन अगर आपका मेन चीज़ ही जहाँ से स्टार्ट होना है अगर वही प्रॉब्लमेटिक है तो ये आगे आप जो मर्जी लगा लें फिर आपकी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है।
1: बिल्कुल
2: सेम केस गोज विद द, चाहे छोटी कंपनी है चाहे बड़ी कंपनी है, इट डजंट मैटर। आपने अपना डाटा सिक्योर करना है, आपने अपने लिए सिक्योर करना है, किसी के लिए नहीं। अगर आपका डाटा लीक हो गया या आपका जो कंपेटिटर है अगर उसके पास आपका डाटा चला गया तो वो तो आपसे ज़्यादा कमा लेगा, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए इन लोगों को अवेयरनेस होनी बड़ी ज़रूरी है कि आप किस तरह अपने आप को सेव कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो यू विल गोइंग टू लूज द बैटल।
1: सर, पाकिस्तान का साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है?
2: बहुत अच्छा। तमाम यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग यूसीपी, हम स्पेशली यूसीपी के अंदर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। ہمارا پروگرام جو ہے بیچلرز کا اور آگے انشاءاللہ ہم اس جو ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے اندر بھی اس میں جائیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا جو اسپیسیفکلی فوکس یہ ہے کہ ہم یہاں پہ صرف اسٹوڈنٹس کو یہ مت بتائیں کہ جی کہ ہم نے جو ہے وہ صرف پڑھانا ہے آپ کو, ہم نے ان کو آن ہینڈ ٹریننگ کروانی ہے. اگر یو سی پی کی بات کریں تو وی آر ویری پراؤڈ ٹو سے دیٹ کہ ہماری جو یو سی پی کی جو فورینزک کی لیب ہے یا سائبر سیکورٹی کی لیب ہے وہ پورے پاکستان میں اس کو میچ کوئی نہیں کر سکتا. جو سافٹ ویئر ہم لوگ یوز کر رہے ہیں
1: زبردست,
2: وہ ابھی تک اور یونیورسٹیز یوز نہیں کر رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ فری کورسز جو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کروائے ہیں, اور جو سب سے پہلا جو ہمارا نے بیچ نکالا ہے وہ اباؤٹ 302 اسٹوڈنٹس کا بیچ ہے جو کہ ہم نے جو فری آف کاسٹ جن کو ہم نے ٹریننگ کرائی ہے سائبر سیکیورٹی کی. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو یو سی پی ہے وہ کتنا اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر انویسٹ کر رہی ہے کہ ہم لوگوں کو رکھ بھی رہے ہیں, ان کو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو فری آف کاسٹ جو ہے ہم ٹریننگس بھی کروا رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ جو ہے ہیکاتھونز بھی ہم نے یہاں پہ کنڈکٹ کرائی ہے ود گورنمنٹ آف پاکستان, منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کے, اگنائٹ کے ساتھ مل کے. اور ہم نے یہاں پہ جو لاسٹ ٹاکرا جو ہوا ہے وہاں پہ بھی ہم نے جو ہے جو کیچ دا فلیگ ایک ایونٹ ہوتا ہے سائبر سیکیورٹی کا وہ بھی ہم نے یہاں پہ امپلیمنٹ کروایا, اور اس کو ہم نے یہاں پہ تھرڈ پوزیشن جو ہے ہماری جو ٹیم یو سی پی نے جو ہے وہ اس میں ون کی ہے.
1: سر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور آسان الفاظ میں سائبر سیکیورٹی ایکسپلین کیا.
2: آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور اس ٹاپک پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا.
1: آج کے شو سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ سائبر سیکیورٹی صرف مستقبل کا حصہ نہیں بلکہ ہمارے موجودہ دور کا بھی مضبوط ساتھی ہے, بس شرط یہ کہ ہم اسے ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں. اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے ٹیکنالوجی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے سنتے رہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا. اللہ حافظ.

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: क्या आपने अपने बेटे की रवैये या आदत में कोई तब्दीली महसूस की है? जैसे स्कूल से नाराजगी की वजह पूछे तो टालमटोल करता है, आजकल कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं मांगता, ज्यादा वक्त दोस्तों में गुजारता है, बुझा बुझा सा रहता है, कोई बीमारी नहीं लेकिन कमजोर होता जा रहा है, कभी नोट किया है आंखें लाल लाल सी हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो ये नशे की अलामत हो सकती है। घबराने या सख्ती करने की जरूरत नहीं, इसे जल्द डॉक्टर को दिखाइए, कहीं देर ना हो जाए।
2: दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज फ्रॉम INL MNC एंड UNODC।
3: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूएसएफए की दुनिया, और मैं आपके हो सुमेर से अपने सभी सुनने वालों को, अपने सभी चाहने वालों को और अपने प्यारे प्यारे सामिन को तहे दिल से कहती हूँ खुश आमदेद। जी जना, आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक खूबसूरत से ट्रैक से, और वो ट्रैक मुझे बेहद पसंद है और मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने तमाम खूबसूरत सामीन को। और आज के प्रोग्राम का मैं फॉर्मेट भी बताती चलूँ कि आज तैयारे गसल में हम फिल्मी म्यूज़िक, यानी ऐसी गसलें जो फिल्म्स में गाई गई थी और कहीं ना कहीं हम उनको भूल जाते हैं, हम वो सुनेंगे। आज मैंने जितनी भी गसलें आपके लिए निकाली हैं और जितनी भी ट्रैक्स आपके लिए निकाली हैं वो सब फिल्म से लिए गए हैं। वो फिल्म्स बहुत ही खूबसूरत थी, ऐसी जिन्हें हमें देखना ज़रूर चाहिए। वेल, हम ये बातें करते रहेंगे, कुछ मूवीज़ की बात भी होगी, कुछ गज़लों की बात भी होगी, कुछ हम अपने एक्ट्रेस को भी याद करेंगे। सो आज हमारा जो प्रोग्राम है इट्स फुल ऑफ एंजॉयमेंट, यानी आज आपको सीखने का भी मिलेगा और बहुत सारी बातें हम आपकी भी करेंगे, आपको भी सुनेंगे। तो ऐसा करते हैं आज की पहली गज़ल सुन लेते हैं।

वेलकम बैक सामीन। अभी आप ये खूबसूरत सा ट्रैक सुन रहे थे। सलीम रज़ा की खूबसूरत सी आवाज़ में यकीनन आपको बेहद पसंद आया होगा। मेरे जनाब, यही तो एक खूबसूरती होती है, यही तो बात है, यही बात है जो हमारी यादों में बसी रहती हैं। ये खूबसूरत मौसीकी, ये खूबसूरत आवाज़ें, ऐसी आवाज़ें जिनमें आशनाई है, चाशनाई है, और ऐसा लगता है कि दिल के बहुत करीब है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें रेयर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें यूनिक हो जाती हैं। वो सदियों पहले बनती ज़रूर हैं, लेकिन अपना असर अगली आने वाली काफ़ी सदियों तक जो है वो आपके लिए जो उसका छोड़ जाती हैं, उनका असर जो है वो अगली कई सदियों तक मोहित होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, ऐसी ही कुछ आवाज़ें हम आज सुनेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम अपने शो में फिल्म से लिए गए तमाम गज़लें शामिल करेंगे, तमाम गज़लें और उसके अलावा फिल्मी ट्रैक्स भी शामिल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिनेमा इंडस्ट्री है उसने अपने 60s, 70s, 80s में एक बहुत अरूज देखा है, और उस अरूज के ज़माने में हमने ऐसे ऐसे सॉन्ग सुने हैं। यानी मुझे एक सॉन्ग बहुत पसंद है, ट्रैक है, गज़ल है वो, बेसिकली मेहदी हसन की, ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे। अरे मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस एक तो ये गज़ल बहुत पसंद है, इसके अल्फाज बहुत खूबसूरत थे, शायरी बहुत खूबसूरत है, इसके अलावा ये जिन पे पिक्चराइज हुई थी गज़ल, यानी वहीद मुराद पे ये गज़ल पिक्चराइज हुई थी, और इतने खूबसूरत अंदाज से वो पियानो के सामने बैठे होते हैं और पियानो बजा रहे होते हैं, वो ये सॉन्ग, ये जो गज़ल है ये गा रहे होते हैं। सो बहुत ही खूबसूरत वो सीन था। और ऐसी ऐसी मूवीज़ जब मैं रिसर्च करती हूँ कि मुझे आपके लिए सारी गज़लें जो होती हैं वो ढूंढ के लानी पड़ती हैं, तो जब मैं रिसर्च करती हूँ, जब मैं इन्हें सुनती हूँ, तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उन मूवीज़ को भी देखूँ जिनमें ये सॉन्ग गाए गए हैं या पिक्चराइज हुए हैं। तो मेरी पहली कोशिश होती है कि मैं जल्दी से आपके लिए वो मूवीज़ भी ले आऊँ कि ये सॉन्ग किस किस मूवी से भी लिया गया है। तो इस तरह से आप भी अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज़ ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बेहद हसीन होती हैं, ये बेहद खूबसूरत होती हैं। हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन हमारा जो माजी होता है ना, वो यादगार होता है। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, हाँ, ताकि कुछ माजी की झरोखों में से खूबसूरत यादें हम तक पहुँचती रहें। हसीन यादें, हसीन लम्हे और हसीन औकात। औकात से बात आई है तो वक्त की बात भी आ जाती है। वक्त, वक्त सबका आता है, हाँ, कभी कभार देर से आता है, कभी कभार हमें बहुत इंतज़ार करवाते हैं, हम बहुत मायूस हो जाते हैं। अच्छा चले, मैं आज एक बात करना चाह रही थी, वो बात ये थी कि हम लोग जिंदगी में कभी कभार बहुत आगे निकल जाते हैं, और कभी कभार जिंदगी हमें बहुत पीछे छोड़ देती है। अरे अब ज़रा सुनिए, दो दोस्त हैं और उनके आपस में बेहद दोस्ती है, बहुत करीबी दोस्त हैं। कहते हैं दोनों कभी अपनी दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे, है ना? आपका भी ऐसा कोई दोस्त होगा प्यारा सा, जो दिल के बहुत करीब होगा, जो आपका दुलारा होगा, लेकिन एक वक्त आता है जब आप अकेले होते हो, जब आपका दोस्त आपके साथ नहीं होता, जब आपके साथ आपका कोई सहारा नहीं होता, आपको सुनने वाला कोई नहीं होता, आपका हाथ थामने वाला कोई नहीं होता, आपको एक प्यार की थपकी देने वाला कोई नहीं होता, तब पता है कौन होता है? तब सिर्फ आप होते हो, तब सिर्फ आपके साथ होती है। लोग हम पे कितना भरोसा करेंगे, हम पे कितना यकीन करेंगे, हमारे साथ कब तक चलेंगे? नहीं चल पाते, कहीं ना कहीं आके उन्हें हमारा साथ छोड़ ही जाना होता है, कहीं ना कहीं हमें वो उन मुसाफिरों की तरह छोड़ जाते हैं जो बैठे रहते हैं स्टेशन पे और अपनी बसों का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन वो बस आ जाई नहीं तो वो मुसाफिर वहीं इंतज़ार करते करते वापस अपने घर को हो लिया। इसलिए अगर आपको लगे कि
आप में कुछ है, आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपके साथ कोई नहीं है, तो तब खुद पे भरोसा करें, तब अल्लाह पे भरोसा करें, क्योंकि जब आप खुद पे यकीन कर लोगे ना तो वो रास्ते बनाता जाता है और वो वहाँ वहाँ से रास्ते बनाएगा जहाँ से आपका वहम गुमा भी नहीं होगा। इसलिए परेशान मत होइए, जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, आपके साथ हमेशा किसने रहना है जरा मुझे बताइए तो सही। चले मैं बताती हूँ, आपके साथ हमेशा रहना है आपने, आपकी साथ ने, आप हमेशा खुद के साथ रहोगे। इसलिए इधर उधर के सहारों को ढूंढना छोड़ दीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। अच्छा, मुझे एक बात सुन के ना बहुत ही उलझन होती है और मैं कहती हूँ कि अरे ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। अब जैसे एक साल का जो अरसा होता है वो कम नहीं होता, जैसे इस माइक से मोहब्बत का जो मेरा सफ़र है वो एक साल का हो गया आज, या आपके भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे, तो आपने कभी महसूस किया कि एक साल में आप में क्या चेंजेस आए और आपके उन दोस्तों में क्या चेंजेस आए। एक साल में बहुत कुछ बदल जाता है लेकिन बाज़ुकात में देखते हुए कुछ लोग वैसे के वैसे रहते हैं, मैंने सुना है। अच्छा चलो ये भी मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक दोस्त हैं और वो मुझे कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल वैसे के वैसा हूँ वेला, मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा हूँ, चिल, आई एम द सेम, या यू आर द सेम, यू आर परफेक्ट, बट यू हैव टू बी मोर परफेक्ट। आप बेहतरीन हो, बल्कि आप बेहतर हो, लेकिन आपको मज़ीद बेहतर बनना है, बेहतरीन बनना है। ऐसा क्यों होता है कि हम जिंदगी में एक लम्हे में आके, एक पॉइंट पे आके हम रुक जाते हैं, अरे बस मैंने ये कर लिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बस मेरी ज़ात, मेरी ज़ात, मेरी ज़ात। खुद से मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत कर ही नहीं सकता जब तक कि वो खुद से मोहब्बत ना करे, लेकिन खुद पसंदी इतनी भी अच्छी नहीं होती कि इस खुद पसंदी में आप वहम में आ जाए, एक गुमा होने लगे, खुश फहमी होने लगे। वो जैसे एक बात है कि खुश होना अच्छी बात है, खुश होइए, खुशी को पाइए, लेकिन खुश फहमी में मत रहिए। हम इस बारे में मज़ीद बातें करते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं कि अब ये खूबसूरत सी गज़ल सुनते हैं जो मुझे बहुत पसंद है और आप सबके लिए, ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का।

ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें जाके कोई ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। अरे वाह, क्या कमाल के अल्फाज हैं, और उससे भी बड़ी बात कि क्या कमाल की आवाज थी। जी बिल्कुल, हम शहनशाह गजल मेहदी हसन की आवाज सुन रहे थे, और ऐसी आवाज कि बस दिल को चीर जाती है, दिल में मीठा सा दर्द होता है, मीठा मीठा दर्द जो बेहद खूबसूरत लगता है। अच्छा, वैसे मैं ये सॉन्ग्स और ये ट्रैक्स और ये गज़लें आपके लिए निकाल के लाती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ हमें इन अल्फाजों से ही सीखने को मिल जाता है। अब देखिए क्या खूबसूरत अल्फाज थे, कि ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। कि हम बहुत दफ़ा ऐसा होते हैं कि मिस अंडरस्टूड करते हैं। अच्छा, मजाक उड़ाना बहुत कॉमन चीज़ है, यानी कहीं भी बैठ के हम कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं, किसी तरह से भी बोल देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि अगला इंसान किस इम्तिहान से गुजर रहा है, वो किस जंग से लड़ रहा है, वो किन हालात और वाकियात के जेरे असर है। नहीं, हमें इस सब से क्या मतलब भाई, हमने तो एक बात कहनी है भाई। अरे देखो उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, अरे उसका चश्मा तो उसे बिल्कुल नहीं सूट कर रहा, चश्मिश लग रहा, देखो तो सही उसे, उसे तो मेकअप ही नहीं करना आता। कह दिया ना, कितना वक्त लगा ये सब के?

जुबां ताला है दिल खोलने का, ताला नहीं बल्कि चाबी है। ताले तो दिलों पे पड़े होते हैं और आप उन तालों को खोल सकते हैं अपनों से, अपने आप से, अपनी जुबां से, कुछ मीठा बोल के, कुछ अच्छा बोल के, कुछ खूबसूरत सा बोल के। अच्छा चलें, आपने मीठा बोल दिया, आपने अच्छा बोल दिया और आपने खूबसूरत बोल दिया, ये तो हो गया। लेकिन अब और क्या किया जाए? अरे मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूँगा या कहूँगी। ये आपने मुझसे वादा किया, हाँ कर लिया है ना, चलिए ठीक है। लेकिन और भी तो बड़ी बातें होती हैं। अब वो क्या बातें हैं, वो हम गाहे बगाहे करते रहेंगे। लेकिन एक बात मुझे इश्फाक साहब की बहुत पसंद है, वो कहते हैं कि हमेशा आप जिंदगी में एक बात याद रखना कि आप किसी के साथ जो भी करोगे ना, जो कुछ भी करोगे, वो ही कुछ आपके साथ होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये मैं बताती हूँ। अगर आप किसी को धोखा दोगे तो आपको एट द एंड ऑफ द डे, आखिर पे जाके आपको धोखा मिलेगा। किसी को मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत मिलेगी, किसी को एहसास दोगे तो एहसास मिलेगा, किसी की कदर करोगे तो कदर की जाएगी, बशर्ते के आप किसी का दिल भी दुखाओगे ना तो आपका भी दिल दुखेगा। इसलिए दूसरों के साथ हमेशा वो सलूक करें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। आप एक कहानी लिख रहे होते हो, अपनी कहानी, तो अपनी कहानी अच्छी से लिखो ना, खूबसूरत से लिखो ना। अच्छा, हमारी कहानियों में ना कभी कभार हमारी ख्वाहिशात आ जाती हैं। हाँ, ख्वाहिश होती है कुछ पाने की, और कई मुझे से लोग भी होते हैं जिन्हें कुछ पाने की ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन जिंदगी फिर भी उन्हें उस तलाश में लगा देती है। बेशक मेरे दिल में ख्वाहिशात नहीं होंगी, बेशक आप में से बहुत सारे लोगों के दिल में ख्वाहिशात नहीं होंगी, लेकिन जिंदगी हमें ला हासिल से हासिल की तरफ ले जाती है। अब ये जो लम्हा होता है ना, ला हासिल से हासिल के दरमियाँ, अरे ये बहुत इम्पोर्टेंट लम्हा होता है। इसमें एक इंसान बन सकता है और एक इंसान टूट सकता है। आप कर सकते हो जो आप चाहते हो, आप में हौसला है, आप में लगन है, आप में पैशन है, और जनाब आप तो अशरफुल मखलूकात हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मजीद बातें हम करते रहेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं कि फौरन से बेशर जाते हैं और एक ट्रैक सुनते हैं, और ये ट्रैक कौन सा है अभी नहीं बताऊंगी, आप सुनिए और फिर हम वापस आके बात करते हैं।

रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, तो के ना वाकफे गुलामी है अभी। अरे क्या अल्फाज था जनाब, ये एक ऐसी मूवी थी, एक ऐसी फिल्म थी जो पाकिस्तान की चंद बेहतरीन फिल्म्स में से एक थी। और अगर आप इस ट्रैक की बात करें तो यकीन मानिए ये ट्रैक मुझे बेहद पसंद है। इसके लिरिक्स बहुत अच्छे थे, शायरी बहुत अच्छी थी, म्यूज़िक बहुत अच्छा था, आवाज़ तो खूबसूरत थी ही क्योंकि शहनशाह कासल मेहदी हसन ने इसको गाया था। लेकिन ये सॉन्ग जिन पे पिक्चराइज हुआ था बेहद कमाल, हमारे तीन लेजेंड्स यानी एजाज साहब, नीलू बेगम और आगा तालिश, ये तीन पाकिस्तान के वो एक्टर्स हैं। आगा तालिश को अगर आप देख लें तो उन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो था, फिल्मी करियर का और एक्टिंग का जो आगाज़ था, वो क़याम पाकिस्तान से पहले भी करते थे। लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तान आए, सेटल्ड हुए, उन्होंने दोबारा से अपनी फिल्मी दुनिया का आगाज़ किया और बहुत बेहतरीन आप जिसे कह लें मूवीज़ उन्होंने दी। और उनको जो एक बूस्टअप मिला था उनके करियर को, वो 7 लाख मूवी रिलीज़ हुई थी आई थिंक 1956 को, वहाँ से उनके करियर को एक बूस्टअप मिला था। उसके बाद उन्होंने एक मूवी की फरंगी, वो बड़ी अमेजिंग मूवी थी जिसमें शायद अलाउद्दीन साहब थे उनके साथ, और उसके अलावा जरका भी उनकी चंद बेहतरीन मूवीज़ में से आती है। जरका का मैं इस सॉन्ग के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये सॉन्ग बेसिकली पिक्चराइज कैसे हुआ था। इस सॉन्ग में आगा तालिश जो थे वो एक पुलिस इंस्पेक्टर, और वो भी फरंगी, मतलब जैसे कि अंग्रेज इंस्पेक्टर का किरदार अदा कर रहे थे, और एजाज साहब और नीलो बेगम जो थी वो कैदी की जो रोल्स थे वो प्ले कर रहे थे। और ये कुछ ऐसा सीन बनाया गया था कि एजाज साहब जो हैं वो सॉन्ग गा रहे हैं और नीरो बेगम उस सॉन्ग पे नाच रही हैं, और आगा ताली साहब जो हैं वो वहाँ पे हिटलर बने हुए हैं। और यकीन मानिए जब मैंने ये सॉन्ग सुना था ना, जो नीरो बेगम ने जो इस सॉन्ग में एक्टिंग कर दी है ना, कमाल कर दिया उन्होंने। मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि अल्फाज बहुत कम पड़ जाते हैं जब आप लेजेंड्स की बात करते हो। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, बल्कि आगा ताली साहब ने भी कहा था कि उनको अपनी, उनसे जब एक सवाल किया गया, उनसे कहा गया कि सर हमें बताएं कि कौन सी ऐसी मूवीज़ हैं जिनके आपको सीन्स अच्छे लगे हों, तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक सीन जो मैं आज तक नहीं भूल पाता वो ये सीन था कि जब नीलू बेगम वो सीन कर रही थी, वो सॉन्ग कर रही थी, तो मुझे उन्हें सिगार लगाना था। और वो कह रहे थे कि वो हमने रियल में किया था, और नीलू बेगम ने जो वो उस सॉन्ग में अदाकारी के जौहर दिखा दिए थे, हम सब उनकी अदाकारी के मोतरफ हो गए थे। जनाब ये होती है बड़े अदाकारों की पहचान, बड़े लोगों की पहचान, ये होता है फ़न। ऐसा फ़न कि जो इतनी सदियां गुजरने के बाद भी जब मैंने उस वीडियो को देखा तो आई फील दैट थिंग कि हाँ वाकई दिस वॉज अ समथिंग, ये कुछ है जो हमें देखना चाहिए। सो डोंट यू थिंक सो, आपको नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है? हमारी ज़िंदगी में कमी है, किस चीज़ की कमी है अब मुझे बताओ, किस चीज़ की कमी है मैं बताऊँ? हमारी चीज़ में कमी है फोकस की, हम फोकस नहीं करते, हम एक पॉइंट नहीं बनाते, हम एक नुक्ता नहीं बनाते। क्या खूबसूरत बात है ना कि एक नुक्ते विच गल मुकदी है, तो वो नुक्ता क्या है? कभी आपने गौर किया, सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी पूरी दुनिया को रोशन करती है, कितनी अच्छी रोशनी होती है ना। सूरज आग के गोले बरसाते हैं गर्मियों में, अरे बहुत गर्मी लगती है, लेकिन यही सूरज सर्दियों में हमारे लिए बाईस रहमत हो जाता है ना। अब अगर आप जरा सा गौर करें तो अगर आग एक चिंगारी, अगर हम उसको भड़का दें, किसी कागज़ को लगा दें तो कागज़ को जला देगी, लकड़ी को जला दें तो लकड़ी को लगा दें तो लकड़ी को भी जला देगी। क्या हमारी ज़िंदगी अभी ऐसी नहीं है?
हम बिखरे हुए हैं, एक चीज पे फोकस नहीं करता है ना। बहुत सारे काम है यार, बहुत सारे काम दिमाग में है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, किस तरफ जाऊं। तो जरा फोकस कीजिए और ये जो आपका दिल है ना, इसको हर तरह की मैल से पाक कर लीजिए। अब हर तरह की मैल को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, आपको कोई डिटर्जेंट जैसे आपके लिए जो कोई साबुन या कोई ऐसा जैसे आपके लिए जो हैंड वॉश इस्तेमाल नहीं करना, कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, लेकिन एक चीज़ इस्तेमाल करनी है, बल्कि उस चीज़ को ख़त्म करना, और वो चीज़ है मैं। आई एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है, मैं, उसको ख़त्म करना है। जब आप अपनी ज़िंदगी से मैं का लफ्ज़ ख़त्म करके हम का लफ्ज़ ले आओगे, वी का लफ्ज़ ले आओगे, हम सब का ले आओगे, अपने आप में से मैं को ख़त्म करके हम ले आओगे, तो जनाब मन की मैल ख़त्म हो जाएगी, दिल की मैल ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी आसान होती जाएगी, लोग पास आते जाएंगे, क्योंकि आप फिर खुद तक महदूद नहीं रहोगे, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। इससे कोशिश कीजिए, अपनी ज़िंदगी से मैं को ख़त्म कीजिए, और आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट गजल की तरफ।

बस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। ये खूबसूरत सी आवाज़ सुन रहे थे आप नसीम बेगम के, और ये खूबसूरत मूवी भी थी। चलिए जनाब, ये गाना मैं आपको बताती चलूँ कि मुसर्रत नज़ीर पे पिक्चराइज हुआ था। मुसर्रत नज़ीर जो कि ना सिर्फ एक एक्ट्रेस थी बल्कि बहुत अच्छी सिंगर भी थी, उनका एक सॉन्ग जो हम सभी को बहुत पसंद है, मेरा लोंग गवाचा, वो उन्हीं का सॉन्ग था और ये उन्हीं की फिल्म थी। तो जनाब, हम कहते हैं कि वक्त को हम पकड़ नहीं सकते, जकड़ नहीं सकते। ऐसा होता है, ऐसा हुआ कि वक्त गुजरता गया, चलता रहा, बीतता गया और हमें पता नहीं चला और ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अब ख़त्म होने वाला है। चंद लम्हे हमारे पास हैं तो हम चाहते हैं कि इन लम्हों को इस्तेमाल जो है इन लम्हों का वो खूबसूरती से करें और आपसे इजाज़त लें। चलिए, मौलाना रूमी ने कहा था कि इस दुनिया में कोई ख़जाना शाम के बगैर नहीं है, कोई फूल कांटे के बगैर नहीं है और कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। तो जनाब, इस हकीकत को भी मान लीजिए कि आपके ज़िंदगी में अगर मुश्किलात हैं, गम हैं, तो उसके पीछे छोटी सी आंख से देखेंगे ना, थोड़ा सा ऐसे करके, तो नज़र आ जाएगी खुशी, नज़र आ जाएगा सुकून। इसलिए खुद पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, आप कर सकते हैं सब कुछ क्योंकि आप में है कुछ ख़ास। तो इसी खूबसूरत बात के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाज़त इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें बहुत खुश रहें, दूसरों को अपने से बहुत ज़्यादा खुश रखें। और एक बात कि कभी भी दूसरों का दिल मत दुखाइए, कभी भी अपनी आर्जी खुशी के लिए दूसरों की खुशियाँ मत तबाह कीजिएगा। अपने चंद लम्हों के सुकून के लिए कभी ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप किसी से उसकी खुशी छीन लेंगे तो यकीन मानिए जिंदगी में कभी सुकून नहीं पाएंगे। सुकून पाने का कॉमन सा कॉमन सी बात है, एक सिंपल सा फार्मूला है, अपने दिल को नरम कर लीजिए, अपने दिमाग को ठंडा कर लीजिए, जुबान को शीरी कर लीजिए, मीठा कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी प्रोग्राम में। मेज़बान सुमैर सकी को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम तैयारी गज़ल में हम आपसे मिलने आएंगे इसी वक्त पे। अल्लाह हाफिज़।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज।

این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید FM 92.6

0: अगर कभी मेरी याद आए.
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB.
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Lunch 2.6.
1: मौसीकी के सुर और ताल,
2: सुर और ताल,
1: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार,
2: और तकरार,
1: सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
2: मस्ती के पास,
1: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस पूर्ण पाकिस्तान में अपने अपने इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।